0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: हेलो हाय वेलकम नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर उस शो पर जहाँ पर मैं आपको एक साउंड सुना दूँ तो आपको उस दौर की याद आ जाएगी। अगर आपको कोई सॉन्ग सुना दूँ उससे भी आपको उस दौर की याद आ जाएगी। मैं कोई एक बात कह दूँ, कोई आपको एक स्मेल याद दिला दूँ तो उससे भी आपको उस दौर की याद आ जाएगी। येस, दिस इज मस्ती 90s मिक्स टेप, हमारा फेवरेट। 3 घंटे का समय शुरू हो चुका है एंड आई एम एज यूजुअल वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी है। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ एंड यस, यादें भी यहाँ पर अच्छे से प्ले होती है एंड वो भी नॉन स्टॉप। बचपन में कभी मम्मी ने आपसे ये कहा है जाओ बाहर जाके खेलो और हमने ये जवाब दिया हो कि नहीं मुझे बोर हो रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना। ऐसी चीज तो हमने सुनी ही नहीं है क्योंकि 90s में बोर होने का टाइम ही कहाँ था यार। एक बॉल मिल गई तो गेम शुरू हो गया, बॉल नहीं मिली तो पेपर की बॉल बना ली, वो भी नहीं है तो अंताक्षरी खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, या साइकिल चलाकर बाहर दोस्तों के साथ रेसिंग कर लेते हैं, या फिर घर में अगर कॉमिक्स बुक पड़ी हो तो उसको पढ़ लेते हैं, या बस कॉलोनी के दोस्तों के साथ बिना किसी रीजन पे स्टेयरकेस पे बैठ के गप्पे लड़ा लेते थे। हमें 90s के टाइम पे एंटरटेनमेंट ढूंढना नहीं पड़ता था, हम खुद एंटरटेनमेंट क्रिएट कर लिया करते थे। एंड बॉलीवुड भी कुछ ऐसा ही था, ना हर फिल्म में VFX था, ना 500 करोड़ का बजट, फिर भी एक गाना, एक डायलॉग, वो एक हसीन सा हेयर स्टाइल, वो एक पोस्टर सीधा दिल में जाके बस जाता था। 90s ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई, खुशी एक्सपेंसिव नहीं होती, इमेजिनेटिव होती है। एक वो बालकनी, वो क्रिकेट बैट, वो एक कैसेट, वो साइकिल, वो गलियां, कुछ दोस्त, बस इतना ही काफी था। तो भाई कुछ गानों के साथ साथ हम फिर उस ही जो है यादों के गलियारों में घुस से जाएंगे जहां पे संडे की सुबह अलग लगा करती थी, मोहल्ले की आवाज अलग लगा करती थी और बचपन सच में फुल टाइम जॉब हुआ करता था। सो अपनी यादों की सीट बेल्ट को एकदम टाइटली बांध लीजिए, दिल को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, शुरू करते हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। क्योंकि यहां पर जो यादों की बात होती है ना वो कभी ओल्ड नहीं होते दोस्त, सिर्फ गोल्ड होते हैं, गोल्ड। वाह वाह वाह वाह।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: स्कूल में एक ऐसी जगह होती थी जहाँ टीचर्स कभी देखते ही नहीं थे, लेकिन हम वहाँ की इंक्वायरी रोज लिया करते थे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूँ अंतरा आपके साथ। यहाँ पर बेंच के नीचे, याद आया, डेस्क के नीचे एक हमारी छोटी सी ही दुनिया हुआ करती थी जहां हम अपने इम्पोर्टेंट पोजेशंस जो है वो छुपा छुपा कर रखते थे। जैसे टाजोज वगैरह हम लोग छुपाते थे, कोई ऐसे ईटा पत्थर जो बड़े ही क्यूट से शेप का लग गया वो उठा उठा के, अरे टॉफी के रैपर्स एंड वो चिप्स के रैपर्स, WWF का वो कार्ड, अगर आप कंचे खेलते थे तो कंचे वहां पे छुपा छुपा के, घर में कभी छोटे छोटे टॉयज होते थे वो अगर हम स्कूल में ले आए तो वो कभी एक लकी कॉइन हमने डेस्क में जाके छोड़ दिया। और कुछ लोग तो भाई जय बेंच के नीचे जो है च्युइंगम भी चिपकाया करते थे, ये तो याद होगा ही आपको। उस डिपार्टमेंट से ऑफिशियली मैं दूर रहना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया है, बाय द वे लेट मी टेल यू दैट, हालांकि मैं बहुत ही नॉटी बच्चा थी। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की है कि हर बेंच की अपनी ही हिस्ट्री हुआ करती थी। कभी किसी पेंसिल से किसी ने नाम लिख दिया, किसी ने हार्ट बना दिया, कभी लिख दिया राहुल लव्स क्रिकेट, कभी लिख दिया बेस्ट फ्रेंड्स ओके नेहा और पूजा। और जब नया सेशन शुरू होता था हम उस बेंच को देखकर इमेजिन करते थे कि पिछले साल यहाँ पे कौन बैठा होगा। इनफैक्ट कुछ कुछ बेंचों की तो कहानियां पूरे स्कूल भर में फेमस हुआ करती थी कि अरे उस क्लास में वो बेंच, अरे तुम उस बेंच में बैठते हो, अरे वो तो बहुत ही लकी माना जाता है, एंड ऑल दोस थिंग्स राइट। जैसे वो बेंच भी कहानियां कलेक्ट करती रहती हो। और अगर टीचर अचानक से बोल दे कि सब अपने बेंच के नीचे देखो तो बस सबके क्लास का जो है बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता था, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कभी कोई कार्ड बाहर आ रहा है, कहीं मम्मी को बताना चल जाए कि स्कूल पढ़ने से ज्यादा ये कलेक्शन हम वहां पे रखने छुपा के रखने जाते हैं। बट सच बताऊं 90s के बच्चे रिच नहीं थे, लेकिन अपने उनके पास ना छोटे छोटे ट्रेजर्स बहुत सारे थे और उन ट्रेजर्स की वैल्यू किसी एक्सपेंसिव टॉयज से भी ज्यादा होती थी। आजकल तो स्कूल में लॉकर्स हैं, पर्सनल ड्रॉर्स हैं, डिजिटल कलेक्शंस हैं, लेकिन उस वुडन बेंच के नीचे छुपी हुई वो छोटी सी दुनिया, उसका एक्साइटमेंट ही कुछ और था। एंड ऑनेस्टली यू नो, कभी मैं अपने स्कूल में आज भी अगर वापस जाऊं, एवरीथिंग इज चेंज, लाइक वो वुडन डेस्क वगैरह अब कुछ भी नहीं है, बट आई कैन स्टिल इमेजिन, और मुझे वो फील वापस से उन दिनों की आती है कि जब इस तरह के वुडन डेस्क जो है वो हुआ करती थी, जिसमें नीचे ड्रॉर्स इस तरह से हुआ करते थे, जहां पे हमारी अपनी खुद की संपत्ति बिल्कुल पाई जाती थी। हाय 90s के वो अमेजिंग दिन, उन्हीं को याद कर रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, बट 90s के गानों के साथ साथ।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: आपने कभी अच्छा नोटिस किया कि 90s के हिंदी फिल्मों में चाहे हीरोइन बारिश में डांस कर रही हो, पहाड़ों पे भाग रही हो या हवा में दुपट्टा उड़ रहा हो, उनके जो बड़े बड़े झुमके ना, वो कभी उलझते ही नहीं थे एक दूसरे के साथ साथ। कैसे करते थे ये सब कुछ बताएंगे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ। क्या चल रहा है भाई? मस्ती 90s मिक्स टेप। अब क्या है कि हम घर पे वही बड़े बड़े हुप्स या फिर चांद वाली इस तरह की चीजें पहन ले तो 5 मिनट में हमारा बाल, कभी दुपट्टा, कुछ ना कुछ उसमें अटक ही जाता था। सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड से अचानक से बन जाते थे। लेकिन बॉलीवुड में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता था और उस परफेक्शन के पीछे था एक पूरा साइलेंट हीरो, द ज्वेलरी कंटिन्यूटी टीम। दैट्स राइट, 90s के फिल्म सेट पर कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के असिस्टेंट्स का एक ही काम होता था, हर शॉट के बाद हीरोइन के इयररिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स बिल्कुल वैसे ही सेट करना जैसे पिछले शॉट में थे। अगर एक झुमका थोड़ा सा भी घूम गया इधर से उधर या एक इयररिंग दूसरे से ज्यादा नीचे आ गया तो कैमरा रोल होने से पहले उसे फिर से एडजस्ट कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि फिल्म एक सीक्वेंस में शूट नहीं होती, राइट? कभी पहले क्लाइमैक्स शूट हो गया, कभी बीच का सीन शूट हो गया, कभी गाने का लास्ट शॉट जो है वो लग गया। और एडिटर जब बाद में सब जोड़ता है तो ऑडियंस को लगना चाहिए कि सब एक ही फ्लो में हुआ है, इसीलिए कंटिन्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ऑनेस्टली 90s के हीरोइंस का जो ज्वेलरी का वो गेम है वो तो बिल्कुल ही अलग था। माधुरी दीक्षित की वो खूबसूरत सी चांद वालियां, करिश्मा कपूर के वो बड़े बड़े हुप्स, जूही चावला के कलरफुल इयररिंग्स, रवीना टंडन के वो ओवरसाइज्ड झुमके, फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं था, एक्सेसरीज भी फुल ऑन स्टार्स हुआ करते थे। और हम मार्केट में जाकर बिल्कुल वैसे ही इयररिंग्स ढूंढते थे। एक छोटा सा एक्सेसरी स्क्रीन पर सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखता था, लेकिन उसे परफेक्ट दिखाने के लिए उसके पीछे कितनी बार उसको सीधा किया गया होगा ये हम कभी सोचते ही नहीं थे। इसीलिए कहते हैं सिनेमा सिर्फ एक्टर्स नहीं बनाते, उन हजारों लोगों की मेहनत से भी बनती है जो कभी स्क्रीन पर नजर ही नहीं आते। आज मैं कुछ ज्यादा अच्छी बातें नहीं कर रही, वैसे मैं तो हमेशा ही अच्छी बातें करती हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसे सेल्फ लव आ जाता है। चौके रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: फैसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: पेन के स्टैंड्स में सिर्फ पेन्स होते थे कि कुछ और भी होता था? ये आदत तो अभी तक मेरी नहीं गई है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं आप अंतरा को ऑन मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई आजकल अगर आप किसी का भी डेस्क वगैरह देखें तो एक स्टाइलिश सा पेन का स्टैंड होता है, उसमें दो पेन्स, एक हाईलाइटर, मे बी एक पेंसिल, ऐसा कुछ बस। लेकिन 90s के घर का पेन स्टैंड मिनी जनरल स्टोर हुआ करता था मेरे दोस्त। उस पेन बेटा पेन स्टैंड से स्क्रू ड्राइवर देना, ये मेरे घर में ऐसा हुआ है। उसको वैसे रखा और एक कप को पेन स्टैंड बनाना, दैट इज द मोस्ट मिडिल क्लास 90s थिंग यू कैन इमेजिन। इट इज स्टिल डेट, आई एम द सेम। अगर आप कभी हमारे स्टूडियो आए होंगे तो मेरा जो डेस्क है वहां पर भी कप है और उस कप को ही मैंने पेन स्टैंड बना के रखा। मेरे घर में भी वो जो मेरा कप है जो पेन स्टैंड बना के रखा हुआ है उसमें पेन के अलावा भी बहुत, इट्स लाइक अ पंडोरा बॉक्स इन इटसेल्फ। ओके, छोटे चिल्लर वाले कॉइन्स और बहुत सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो हमें वो बिल्कुल अजीब नहीं लगता था और अभी भी अजीब नहीं लगता है एज यू कैन सी, क्योंकि उसमें सिर्फ पेंस थोड़ी ना होते थे, एक स्केल, दो तीन पेंसिल्स, एक मार्कर जो कभी चलता नहीं, सूखा पड़ा वहाँ पे हमेशा से, मतलब हरप्पा का अगर आप खोदोगे तो वहीं पे कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा ऐसा कुछ, सेलो टेप का आधा रोल, दो पुरानी बैटरीज, उसमें कुछ भी नहीं है, है ना, रबर बैंड्स ये तो बहुत ही पाए जाते थे, सेफ्टी पेंस, कभी कभी तो स्पेयर चाबियां जो छोटी छोटी होती है ना वो भी उसमें पाई जाती थी। सबसे फनी चीज, हर घर में एक पेन स्टैंड जरूर होता था लेकिन जब सच में पेन चाहिए होता तो वर्किंग पेन कभी नहीं मिलता था, कभी भी नहीं। सारे पेन ऐसे, मतलब कोई भी नहीं पेन चल रहा होता था उसमें से, हर पेन को पहले कॉपी पे घुमा घुमा के चेक करना पड़ता था कि ये चल रहा है, नहीं इसमें रिफिल खत्म है, अरे वो ब्लू वाला दे दे घर का। वो एक ही पेन जो सबसे स्मूथ चलता था उसकी तो वैल्यू ही अलग होती थी और वो पापा ऑफिस ले जाते थे और हम चुपके से उसे होमवर्क के लिए एट टाइम्स निकाल लिया करते थे। सो 90s में स्टोरेज बॉक्सेस कम हुआ करते थे एंड स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो, इसीलिए हर चीज की अपनी क्रिएटिव जगह होती थी। पेन स्टैंड, किचन का डब्बा, टीवी का कैबिनेट का ड्रॉर, सब मल्टीपर्पज हुआ करते थे। मिनिमलिज्म का जमाना ही नहीं था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का जमाना था। और बताए आज घर जाकर अगर किसी पुराने पेन स्टैंड में झाकोगे ना तो आपको भी कोई पुरानी बैटरी मिली जाएगी। या आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: नाइन्टीज की बात करें, फोन डायरीज की बात ना करें, ऐसा कैसे ही हो सकता है। हमारी पूरी जिंदगानी, लोगों के फोन नंबर टू एड्रेस, सब कुछ हैंड रिटन उस फोन डायरी में मिला करते थे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। मैं हूं 90s वाली अंशा आपके साथ। आज एक नंबर क्या, कल अगर मैंने कोई पासवर्ड बनाया हो ना, तो उसको भी ढूंढने में और याद करने में मुझे एटलीस्ट 5 मिनट लग जाते हैं। बट तुरंत से पूछ लो मेरा जिंदगी का पहला फोन नंबर, मैं अभी आपको ऐसे ऐसे बताऊंगी कि जैसे ये कैसे हुआ। 90s में फोन याद नहीं रखता था, घर की डायरी इनफैक्ट याद रखती थी अगर आपको खुद याद नहीं होता था। वो छोटी सी टेलीफोन डायरी, कभी वो ब्लू, कभी ब्लैक, कभी वो लेदर कवर वाली, ABC करके अल्फाबेट बने हुआ करते थे उसमें, और हर पेज पर नेम, एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, शर्मा अंकल ये 264873, मामा जी लखनऊ किराने वाले, मामा जी बरेली ये वाले, डॉक्टर, इलेक्ट्रिशियन, दूध वाला, केबल वाला, सब ही एक डायरी में। और उस डायरी की हैंडराइटिंग भी तो ऐसी शानदार होती थी, कुछ नंबर्स मम्मी के लिखे हुए होते थे, कभी डैडी ने लिखे हुए, बीच में कहीं किसी हमने कुछ एकदम अपने पेंसिल से डूडल बना रखे हैं, अलग ही अपनी खतरनाक हैंडराइटिंग से जल्दी जल्दी कुछ लिख रखा है कि खुद ही पढ़ने में नहीं आ रहा है। और अगर किसी का जो है नंबर बदल जाए तो पुराने नंबर पर एक लाइन खींच के उसको काटते थे, साइड में नया नंबर लिख दिया जाता था। भाई डिलीट का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड जब फोन करना होता था सबसे पहले डायरी ढूंढो, फिर नंबर पढ़ो, फिर लैंडलाइन पे एक एक डिजिट ध्यान से डायल करो, और अगर लास्ट डिजिट गलत हो गया तो बस वापस से पूरी मेहनत दोबारा। सबसे प्यारी बात जो है लगती ये थी कि उस डायरी में सिर्फ फोन नंबर्स नहीं रहते थे, रिश्तों की लिस्ट रहती थी। हर नाम के पीछे एक चेहरा था, एक घर था, एक कहानी थी। आज कॉन्टैक्ट्स क्लाउड में सेव होते हैं, तब यादें कागज पे रहा करती थी। और वो डायरी घर की इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि सबको पता होता था टेलीफोन डायरी कहाँ रखी है। और ऑनेस्टली आज अगर कहीं पे पुरानी ऐसे फोन डायरी मिल जाए तो आई थिंक नंबर पढ़ने से पहले ही यादें कनेक्ट हो जाती है। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड दैट माय मॉम स्टिल मेंटेन्स अ हैंड रिटन डायरी फॉर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। लाइक फोन नंबर्स के लिए भी उनके पास डायरी है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा नहीं है जितने अपने हैंडराइटिंग और लिखा हुआ उसमें। बट इट हैज इट has its own pros, okay? Let me tell you that. अच्छी बात है वो एक तरह से। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अच्छी बात है तो हम हमेशा ही यहाँ पे करते रहते हैं, 90s की यादों को ताजा कर रहे हैं। और मस्ती 90s मिक्सटेप, आप कहीं मत जाइए, बिकॉज इट्स टाइम फॉर अ 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: आपके साथ साथ मुझे भी कई सारी चीजें यहाँ पे इस शो पे बात करते करते पता चल जाती है, which is a good thing. We all are learning together. Radio Masti 24/7 live पर Masti 90s mixtape आप सुन रहे हो, मैं हूँ अंतरा आपके साथ यहाँ पर। कभी आपने नोटिस किया है, चलिए सिनेमा 90s के सिनेमा की तरफ थोड़ा सा झुकते हैं, चले जाते हैं उस गली में, वहां पे 90s में जैसे ही विलेन की एंट्री होती थी, सबसे पहले कैमरा यूजुअली क्या दिखाता, एक बड़ी सी चेयर, एक लंबा सा शानदार ऑफिस और टेबल पर रखा हुआ है एक ग्लोब। कितने विलेंस को दुनिया घुमानी थी ये बताइए मुझे और कितनों ने बस उस ग्लोब को स्टाइल के लिए घुमाया था, कभी प्रेम चोपड़ा, कभी गुलशन ग्रोवर, कभी अमरीश पुरी जी, डायलॉग बोलते बोलते आराम से ग्लोब को घुमा देते थे जैसे अगला प्लान स्विट्जरलैंड से ही शुरू होने वाला है। लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बहुत ही जो है बात हुआ करती थी। 90s में प्रोडक्शन डिजाइनर्स बहुत सोच समझ कर सेट्स बनाते थे, एक ग्लोब या वर्ल्ड मैप या फॉरेन की पेंटिंग्स या इम्पोर्टेड लुकिंग डेकोर जो है, ये सब इसलिए रखा जाता था ताकि ऑडियंस को बिना एक भी डायलॉग बोले ये समझ में आ जाए कि ये आदमी बहुत पावरफुल है और इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है। सिनेमा में इसे विजुअल स्टोरी टेलिंग कहा जाता है उनके टर्म्स में, मतलब सेट ही कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बता दिया करे। ऑनेस्टली 90s की फिल्म्स में प्रोडक्शन डिजाइनर्स तो कमाल करते ही थे। हीरो का घर देखो, सीधा साधा सा, विलन का ऑफिस देखो, मार्बल फ्लोर, ह्यूज डेस्क, क्रिस्टल के ग्लासेस और बीच में हमारा सुपरस्टार मिस्टर ग्लोब। और उस जमाने में क्योंकि वीएफएक्स कम था इसीलिए पर्सनालिटी सेट्स से क्रिएट की जाती थी। कोई एक प्रॉप हो गया या पेंटिंग हो गई, लैंप हो गया, जैसे ये ग्लोब है वो हो गया, एंड कैरेक्टर का लेवल ऑडियंस अपने आप ही समझ जाती थी। आज जब कभी आप कोई 90s की मूवी उठाकर देखें तो आप भी एक बार नोटिस करना, होता ही था ग्लोब घुमाने का कोई एक सिस्टम इन्होंने बना ही रखा था कि नहीं बहुत पावरफुल है आदमी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जी हाँ, मस्ती 90s मिक्सटेप पर भी एक बहुत पावरफुल चीज है। अरे हम और ये 90s के गाने, देखो इतना पावर है कि आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो, कैसे जाओगे। हाय,

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: ये तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी किया ही होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कर रखा है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप, मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। भाई एक बहुत ही फेमस ड्रिंक 90s के टाइम पे, फ्रूटी और उसका हरे हरे रंग का डब्बा। 90s में फ्रूटी पीने के बाद पैकेट सीधा डस्टबिन में जाता था? बिल्कुल नहीं जी, पहले स्ट्रॉ से नॉर्मल सिप किया, फिर पैकेट को हल्का सा टिल्ट किया, फिर और टिल्ट किया, और जब लगता था कि अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है तब शुरू होती थी असली इंजीनियरिंग। पैकेट को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करो, फिर दोबारा फोल्ड करो, फिर दोनों हाथों से उसको स्क्वीज करो और स्ट्रॉ से ऐसे करके खींचो। वो आवाज अनाउंस करती थी कि अभी एक लास्ट सिप और बाकी है मेरे दोस्त, और वो लास्ट सिप पता नहीं क्यों पूरे पैकेट का सबसे टेस्टी सिप लगता था। कभी पैकेट वो इतना फ्लैट हम लोग कर देते थे कि लगता था इसमें फ्रूटी नहीं स्कूल की कोई प्रेस्ड वर्कशीट थी, और अगर कोई दोस्त जल्दी से पैकेट फेंक दे तो हम तुरंत बोलते थे अरे यार अरे फेंका क्यों, इसमें अभी है। 90s के बच्चों को क्वांटिटी का एस्टिमेट पैकेजिंग देखकर नहीं स्क्वीज करके होता था। वैसे फ्रूटी का वो छोटा टेट्रा पैक जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इट्स लाइक फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया राइट। गर्मी की छुट्टी, स्कूल का पिकनिक, रेलवे स्टेशन, बर्थडे पार्टी या किसी रिलेटिव के घर जाना, ठंडी फ्रूटी मिल जाए तो हॉस्पिटैलिटी सक्सेसफुल लगती थी। और स्ट्रॉ लगाना भी एक स्किल था, ज्यादा फोर्स लगाओ तो पैकेट की दूसरी तरफ जो है छेद हो जाता था, कम फोर्स लगाओ तो स्ट्रॉ ही बेंड हो जाया करता था, लेकिन जब परफेक्टली लग जाए वो सैटिस्फैक्शन ही अलग लेवल की हुआ करती थी। ओके, बट इसी के साथ साथ जो है आई रिमेम्बर, आपने कभी पैकेट फोड़ा है फ्रूटी का? वो भी हम करते थे। तो वंस एवरी लाइक आई हैव हैड द लास्ट बिट ऑफ द सिप, पूरा डब्बा खाली हो गया टेट्रा पैक, उसमें हवा भरो और उसके बाद उसके ऊपर कूद पड़ो, या तो उसमें से फट से आवाज आती थी। तो हमने अपना ही फायर क्रैकर, दिवाली नहीं है तो क्या हुआ, हम ये कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, 90s के बच्चे कुछ भी इजाद करने की कैपेबिलिटी रखते थे। या इट्स जस्ट अमेजिंग, क्या याद है यार, ये कमाल कमाल बेमिसाल, जस्ट लाइक द गाना इज कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: ये तो आज भी होता है ब्रो, रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्सटेप यहाँ पर चल रहा है। एक वो वक्त 90s का जब लाइफ के सबसे डिफिकल्ट डिसीजंस में से ये एक होता था कि ये जो पार्ले जी या कि ग्लूकोज का बिस्किट है उसको चाय में कितनी देर तक डुबोना है, ये आज तक हम लोग क्रैक ही नहीं कर पाए हैं। नहीं ज्यादा जल्दी निकाला तो बिस्किट हार्ड या फिर चाय की स्मेल आने लगी, लेकिन बस एक सेकेंड ज्यादा अगर रुक गए तो फिर प्लोप सीधा कप के अंदर शहीर, और फिर स्पून लेकर उसको रेस्क्यू करने की कोशिश जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी चल रही हो। हर घर में एक एक्सपर्ट होता था, पापा एकदम जैसे परफेक्ट टाइमिंग से एकदम बिस्किट निकालते थे, उनका कभी प्लोप करके ऐसे नहीं कर जाता। हम सोचते थे ये स्किल सेट सीखने के लिए कौन से अकेडमी ज्वाइन करें हम और अगर बिस्किट टूट गया तो चाय का लास्ट सिप तक उसके टुकड़े जो है वो ढूंढा जाता था, कभी स्पून से, कभी कप को टिल्ट करके, कभी चुपचाप उसको पी जाते थे। वैसे ये ग्लूकोज बिस्किट भी कितना सिंपल था ना, कोई क्रीम नहीं, कोई चॉकलेट नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, फिर भी सुबह की चाय, स्कूल से आकर दूध अगर आप पी रहे हो, या शाम की फैमिली गॉसिप, हर जगह वो जरूर होता था। याद है एक बिस्किट कभी इनफ होता ही नहीं था, बस एक और, ऐसा बोलते बोलते पता नहीं पूरा का पूरा पैकेट कभी कभी हम लोग खत्म कर जाया करते थे। सो 90s में स्नैक्स एक्सपेंसिव इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन मोमेंट्स बहुत रिच थे। एक कप चाय, एक पैकेट ग्लूकोज का बिस्किट और घर भर की बातें, बस यही बना देता था शाम को सक्सेसफुल। और आज भी चाय के साथ कभी ऐसे हम लोग बिस्किट दिख जाए तो फिर वो करने में कितना मतलब नॉस्टैल्जिया और वो मैजिक हम खुद ही खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखना ये अभी प्लॉप करके गए, हम ये मैं कभी कर ही नहीं पाई हूँ, और वही होता है वो प्लॉप करके दिन फिर दूध उसको निकालने के चक्कर में, अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में दूसरा भी यूज करो तो दूसरा भी उसको साथ में शहीद हो जाता था उसी के। बट अलोंग विथ दैट आई थिंक या एंड दिस मेमोरी इज मोर स्पेसिफिक टू पार्ले जी, नहीं आपको नहीं लगता? रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर है। कभी कभी ऐसे ही लगता है कि या तो चाय और बिस्किट होनी चाहिए या फिर चाय और पराठा होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 90s थिंग, यू नो, स्नैक्स के मामले में कुछ नहीं है तो पराठा, अरे वो सुबह बनाया था बच गया है तो वही खा लिया चाय के साथ। आज भी वो खाने में इतना अमेजिंग लगता है यार कि मैं क्या ही बताऊँ, आज ही खाने का मन हो गया, क्या ही होता है। स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musti 24/7 Live. 75.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

इस बात पे तो आपकी भी एकदम बहुत अच्छी सी स्वीट सी याद ताज़ा होगी. नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज गेट इमोशनल व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ, बिकॉज मुझे लगा कि इस बारे में बात करते और सोचकर ही मैं कितनी इमोशनल हो गई. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप. एंड यस, 90s के ज़माने की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जब टीवी स्क्रीन पर जब बस थोड़ी सी ही धूल दिखा करती थी और हमारी मम्मियाँ जो हैं उन्होंने आसपास कपड़ा ढूंढा पर उनको मिला नहीं, सीधा अपना सूट का या साड़ी का पल्लू जो है उससे टीवी साफ कर दिया. हम भी बिल्कुल इसको नॉर्मली समझते थे, किसी को अजीब नहीं लगता था. आज होता तो भाई माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ यूज़ करा करो, ये करा करो, स्क्रीन क्लीनर का जो है वो स्प्रे जो है वो यूज़ करो, एलसीडी सेव होना चाहिए, एलईडी का ये होना चाहिए, डोंट यू यूज़ केमिकल, स्क्रीन ख़राब हो जाएगा, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस, राइट. लेकिन 90s में क्लीनिंग का एक ही रूल था, जो हाथ में है उसी से साफ कर दो. कभी साड़ी का पल्लू, कभी रुमाल, कभी पुरानी बनियान, है ना, कभी स्कूल का सॉफ्ट हैंकरचिफ, उसको भी यूज में लाया जाता था. और टीवी भी कौन सा बड़ा स्लिम स्मार्ट टीवी हुआ करता था, वो भी एकदम बड़ा सा एक टीवी का बॉक्स जिसके ऊपर क्रोशे का कवर, साइड में फैमिली की फोटो, एक फ्लावर वास, और कभी कभी एक जो है किताबें विताबें जो है बिल्कुल वहां पे मिल जाया करती थी. भाई संडे की रामायण हो, महाभारत हो, शक्तिमान हो, चित्रहार हो, फ्राइडे टॉप 10 हो, टीवी को ऑन करने से पहले मम्मी एक बार स्क्रीन जरूर पोंछती थी, जैसे पिक्चर क्वालिटी का असली सीक्रेट केबल कनेक्शन नहीं उनके पल्लू का कनेक्शन हो उनके साथ. जब मेहमान आने वाले हो तो पूरा ड्राइंग रूम एकदम एक्सप्रेस मोड में क्लीन होता था, वो तो आज भी होता है बाय द वे, तभी आई थिंक सबसे ज्यादा क्लीन होता है. सो टीवी शो के सेंटर टेबल सब कुछ 5 मिनट का उनको मेक ओवर मिल जाया करता था. 90s के मॉम्स के पास कोई क्लीनिंग हैक्स नहीं थे, उनके पास स्पीड थी और उनका कॉन्फिडेंस भी कमाल का था. 2 सेकंड में स्क्रीन चमक जाती है और हम सोचते कि बस अब पिक्चर ना और क्लियर आएगी, अभी मम्मी ने साफ किया है. आजकल टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स बदल गई है, लेकिन वो एक छोटा सा पल्लू जिसने घर की कितनी चीजें बिना शोर शराबे के चमका दी थी, उसकी याद आज भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, है ना. एंड दैट इज व्हाई आई गेट इमोशनल व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट. माई मॉम डजंट लाइक वेयर अ लॉट ऑफ साड़ीज, जब वो घर पे होती थी तो सूट वो पहना करती थी तो वो सूट के किनारे से ही या फिर अपने दुपट्टे से जो है वो पोंछ दिया. हम लोग भी जब से जैसे खेल वेल के आते थे, हम कहीं गिर गए और जगह जगह पे हमारे मुंह पे सारा मड वगैरह सब कुछ लग गया, और घर अंदर घुसने से पहले मम्मी अपने दुपट्टे से ही हमें पहले बाहर ड्राई क्लीन कर दिया करती थी, मुँह वो साफ किया, पैर वैर साफ किया सब कुछ, और उसके बाद हमें घर के अंदर लाती थी कि भाई घर गंदा हो पूरा और मुझे वापस से पोछा लगाना पड़े, उससे बेटर है इन लोगों को बाहर ही थोड़ा सा ड्राई क्लीन करके सीधा बाथरूम में डाल दो. सो यस, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग मेमोरीज, राइट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: यार ये दोनों भीग तो गए हैं, लेकिन ये नेक्स्ट शॉट में सूख कैसे गए, है ना? ये 90s का सिनेमा देख देख के जो सवाल हमने पूछे हैं, जिनके जवाब ढूंढने की हमने कभी कोशिश भी नहीं की, बिकॉज वी थॉट दैट एवरीथिंग इन व्हाटएवर हैपनिंग ऑन द स्क्रीन ऑन सिनेमा इज टोटल मैजिक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। कभी आपने ये क्वेश्चन किया कि ये इस शॉट में तो पूरे भीगे हुए थे और अगला सीन कपड़े बिल्कुल फ्रेश और परफेक्टली ड्राई? हम तो घर के बाहर 2 मिनट भीग जाए तो कपड़े शाम तक नहीं सूखते थे, लेकिन बॉलीवुड में मैजिक नहीं होता था, प्लानिंग काफी की जाती थी। और ये है इसी बारे में आज का बॉलीवुड 90s का ट्रिविया। 90s में रेन सॉन्ग्स या रेन सीन्स जो है वो शूट करते वक्त एक्टर्स के लिए अक्सर सेम कॉस्ट्यूम के मल्टीपल आइडेंटिकल सेट्स बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि एक शॉट के बाद कपड़े बहुत हैवी और अनकंफर्टेबल हो जाते थे, तो अगले टेक के लिए वही डिजाइन, वही कलर, वही फिटिंग, लेकिन एक नया ड्राई कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता था। इफ यू एवर नोटिस, कोई भी रेन सीन जो है ना, आपको प्रिंटेड उसमें नहीं दिखा होगा। या तो उन्होंने एक थान में बहुत सारे शर्ट्स काट दी हो, या फिर ड्रेसेस बना ली हो, या फिर ये सॉलिड कलर के ही, क्योंकि वो उसके डुप्लीकेट्स मतलब काफी मल्टीपल सस्ते में मिलना ईजी हुआ करता था। एंड इसी तरह से नया ड्राई कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता था ताकि एक्टर कंफर्टेबल भी रहे और ऑडियंस को कंटिन्यूटी का बिल्कुल पता भी ना चले। इसीलिए कभी कभी एक ही गाने के लिए एक कॉस्ट्यूम के 3-4 वर्जन्स तक तैयार किए जाते थे। सिनेमा का असली मैजिक कैमरा के सामने कम, कैमरा के पीछे ज्यादा होता था। सोचिए ना, AI, CGI, फैंसी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ प्लानिंग, टीम वर्क और बहुत सारा पेशेंस। वैसे 90s के रेन सॉन्ग्स की बात ही अलग थी, आप तो मानोगे ही, है ना, है ना? अब यू नो, अब क्या ही बताए, कितनी ही तारीफ करे, वो बारिश एंड रोमांटिक मेलोडी एंड वो रंग बिरंगे अम्ब्रेलास, और हमको लगता था कि यार काश ऐसी बारिश हमारे यहाँ भी हो जाए। या बट यू नो, कैसे पता चला, उस बारिश के पीछे एक पूरी वार्डरोब की जो है भीड़ हुआ करती थी। इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड में सिर्फ हीरोज के बैकअप नहीं होते, कॉस्ट्यूम्स के भी बैकअप होते थे। माय डियर फ्रेंड्स, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जी हाँ, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, तभी तो गाड़ी चलेगी चलेगी।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल्स।

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराप के साथ यहाँ पर और चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। सुबह का न्यूज़पेपर आता था और बापी मेरे जो है वो तो मतलब ऑब्वियसली न्यूज़ वगैरह पढ़ते थे, तो सीधा हेडलाइंस पे। मम्मी अगर न्यूज़पेपर उठाती थी तो मोस्टली यू नो सप्लीमेंट्स पे जाती थी टू सी द रेसिपीज एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड हम तो सीधा कॉमिक्स सेक्शन पे जाते थे। भाई कॉमिक्स इसलिए, भाई पॉलिटिक्स बाद में आएगा, स्पोर्ट्स भी बाद में आएगा, स्टॉक मार्केट हमें तो वैसे भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कॉमिक्स वो पहले ज़रूर पढ़नी होती थी। वो एक छोटी सी स्ट्रिप हुआ करती थी, 3-4 बॉक्सेस एंड 2 मिनट की हंसी, बस आई थिंक दिन की परफेक्ट शुरुआत। सबसे फनी बात, कभी कभी न्यूज़पेपर फोल्ड ही इस तरह से हम कर देते थे कि बाकी पेपर अनटच्ड रहता था, सिर्फ कॉमिक्स वाला कॉर्नर पूरा जो है एज अ क्रिम्पल्ड सा जो है वो हो जाया करता था। एंड हमें तो अक्सर डांट पड़ती थी, पहले न्यूज़पेपर ठीक से फोल्ड करो, एंड हम कॉमिक्स दोबारा पढ़ने लग जाते थे। एंड कभी वो जोक्स का भी एक कॉलम आया करता था, कभी एक पजल्स का कॉर्नर हुआ करता था, कभी स्पॉट द डिफरेंस, कभी क्रॉसवर्ड। न्यूज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट पैकेज भी हुआ करता था। आज स्क्रोलिंग शुरू करते ही 1000 अपडेट्स मिल जाते हैं, लेकिन तब एक न्यूज़पेपर पूरे घर में घूमता रहता था, पापा के बाद मम्मी, मम्मी के बाद दादाजी, कभी कोई और सबसे लास्ट में हमारे हाथ। लेकिन हमारा टारगेट तो फिक्स ही था, एकदम लॉक्ड था, कॉमिक्स मिस ही नहीं होनी चाहिए। सच कहूं उस वक्त हमें दुनिया की टेंशन नहीं चाहिए थी, बस एक अच्छी सी फनी सी ड्राइंग, एक पंचलाइन। और इसीलिए तो कहते हैं 90s में हेडलाइंस इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन कॉमिक्स सबसे अर्जेंट हुआ करती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बस कुछ देर और इस यादों के पिटारे का लुत्फ उठाए, मैं वापस आती हूँ अभी थोड़ी देर में।

0: धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email WhatsApp

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे थे, दैट्स राइट, मस्ती 90s मिक्स टेप। इसी के साथ आज का सफर यहीं तक मेरे दोस्त। क्या कमाल का जमाना था यार 90s। एक फ्रूटी अलास सिप हमें अचीवमेंट लगा करता था, ग्लूकोज बिस्किट चाय में टूट जाए तो दिल टूट जाया करता था, मम्मी की साड़ी का पल्लू हर चीज के क्लीनिंग का क्लॉथ बना करता था, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बाद में, कॉमिक्स पहले और बॉलीवुड का विलन या उसके ग्लोब के बिना तो काफी अधूरा लगता था। 90s ने हमें सिर्फ गाने और फिल्में नहीं दी, उसने हमें छोटी छोटी खुशियों की वैल्यू सिखाई, जहां एंटरटेनमेंट महंगा नहीं था और हैप्पीनेस किसी ऐप से डाउनलोड नहीं होती थी, बस रोज की जिंदगी में ही उसको हम ढूंढ लिया करते थे। अगर आज के किसी भी बात ने आपको भी एक पुरानी याद में वो लेकर गया हो तो जरूर ऑफकोर्स लेट अस नो 9158963 पर, कौन सी मेमोरी ने आपको सबसे ज्यादा स्माइल करवा दिया हमारे जो है बिल्कुल ऐप के जरिए, या फिर हम जो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर वहां पर भी आप बिल्कुल डाल सकते हैं। वेल, इसी बात के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। आई थिंक इसकी इस शो की हमेशा ही ये खास बात होती है, भीनी भीनी खुशबू जो है वो एकदम काफी टाइम तक रहती है, एंड आई लव दैट अबाउट द शो। सो आई होप दैट ये यादें और ये भीनी भीनी खुशबू 90s की आपके साथ भी यूं ही बनी रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जिद्दी, इस शब्द से तो सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। बचपन से ही कितनी बार डांट पड़ी होगी, कितनी बार अब भी कहा जाता होगा। मतलब कि ऑल इन ऑल नेगेटिव वर्ड ही है ये, लेकिन ये जिद्दी वर्ड अगर किसी इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव हुआ तो उसने वो कर दिखाया कि उनकी कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, केम जे सिंगापुर, सारू जे अखा सिंगापुर, मारू जे, पहचान गए मुझे कौन? हाई, मैं आपका समर लेजेंड्स वाला रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर लेजेंड्स। इस बार हम जिनकी कहानी लेकर आए हैं वो जिद्दी थे जो वक्त के बहाव के साथ नहीं बहे बल्कि उसके अगेंस्ट बहे, अपना रास्ता खुद बनाया और हमें मजबूर कर दिया कि हम उनकी कहानी आप तक पहुंचाएं। कुल मिलाकर जिद्दी थे और अपनी जिद को पूरी करके ही माने। ऐसे ही जिद्दियों की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। वैसे इस शब्द को नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इन लोगों ने उसे पॉजिटिव बना दिया और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो शख्स भी ऐसे ही है जिसकी लगन और मेहनत ने जिद्दी होने को लगन से जोड़ दिया, कुछ चाहना और पाने से जोड़ दिया। वो है मणिपुर की चुंगनई जान, जो है आज हमारी लेजेंड। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? बात तो ठीक है, इनके बारे में तो कभी आपने सुना ही नहीं ना, जानना चाहते ना? अच्छा, अगर अब मैं बोलूं कि आज की हमारी लेजेंड है मैरी कॉम, अब तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इन्हें पहचाना ना हो। इंडिया को इतना गौरव, इतना सम्मान विश्व के खेल पटल पर इन्होंने दिलाया है तो कैसे न जाने हम उनको। लेकिन अक्सर जैसा होता है कि किसी एक क्षेत्र में अगर कोई नाम कमाता है तो ये समझा जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली उस खेल से जुड़ी रही होगी, या उसकी अप्रोच होगी, या धनवान रहा होगा वो, या कोई तो एक्सपोजर रहा होगा। लेकिन मैरी कॉम के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट उनकी बॉक्सिंग की चॉइस एक मायने में कहें तो रेंडम ही थी। भाई उनके पिता और माँ तो मणिपुर के एक छोटे से गांव में किसान थे और वहीं बचपन में मैरी भी उन्हीं की मदद किया करती थी खेती में। एक बिल्कुल साधारण सी लड़की, लेकिन एक साधारण सी लड़की में ही कहीं ना कहीं छुपी थी असाधारण प्रतिभा, असाधारण कीर्तिमान स्थापित करने की क्षमता, असाधारण लगन, असाधारण इच्छा शक्ति। तो इस असाधारण बालिका की हम बात करेंगे आगे, कैसे जिया मैरी ने अपना बचपन और कैसे शुरू हुआ उनका बॉक्सिंग का सफर। सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स समर के साथ। फिलहाल ये गाने आ रहे हैं आपके लिए।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
4: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आप सुन रहे हैं ये सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो सिंस 2009, और समर आपके साथ हाजिर है लेकर एक लेजेंड की कहानी, और ये है मैरी कॉम। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो गांव में रहती थी, पिता किसान थे और माँ और मैरी घर के काम, खेत में भी पिता की मदद किया करते थे, उनके काम में हाथ बटाया करते थे। दरअसल मैरी 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। पूरा नाम उनका रखा गया मंगतेई चुंगनेइजान। चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए एक जिम्मेदार बड़े बच्चे की तरह घर में माँ की मदद भी करती थी और खेत में पिता की भी। स्कूल जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन गांव के लड़के डरते थे उनसे, क्योंकि वो एकदम गुस्से में आकर तोड़ फोड़ पे उतारू हो जाती थी। अच्छा, पिता को बड़ी कोफ्त होती थी इस बात से कि लड़की है, जब देखो तब लड़ती रहती है। अरे कहीं हाथ पैर टूट गए, कोई चोट आ गई हा? तो फिर इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और मेरे को शादी भी नहीं करेगा। पर ये सब मैरी को उस वक्त समझ नहीं आता था। उन्हें लगता था कि कोई लड़ेगा ना उनसे या कुछ गलत होगा तो दो मुक्के मारेंगी उसे और चुप कर देंगी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि उनका परिवार बड़ी तंग हाली से गुजर रहा है, तंगी तुरसी में जीता है। तो एक सपना था मन में कि एक दिन ऐसा हो जब उनके पास सब कुछ हो, अच्छा घर जिसकी छत टपकती ना हो, कुछ पैसे पास में हमेशा हो ताकि जरूरत के वक्त सोचना ना पड़े कि अब क्या करेंगे। लेकिन जहां उनका ये छोटा सा घर था, ये वो गांव नहीं था जहां वो पैदा हुई। दरअसल उनके पैतृक गांव में उनका जन्म तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वो गांव छोड़कर इस गांव में जो उनकी माँ का गांव था आ गई। एक छोटी सी जमीन लेकर वो और उनका परिवार खेती करने लगे। ऐसी ही जिंदगी जीते हुए आया वो वक्त जब उनकी शुरुआत हुई बॉक्सिंग में। क्या और कैसे हुआ ये सब बताऊंगा इस ब्रेक की बात। सुंदर ये रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैरी कॉम की कहानी समर की जुबानी।
7: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
8: किया।
7: कभी किसी को दिल

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर, हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
4: रात

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: तो ये साल था 2000 का। उन्हें पता चला कि उनकी कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिनमें जो स्पोर्ट्स रखे गए हैं उसमें से एक बॉक्सिंग भी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, और मैं बात कर रहा हूं मैरी कॉम की। लेजेंड्स सुन रहे हैं आप मेरे साथ। मैरी इस वक्त तक चुप चुप के ट्रेनिंग करने लगी थी, तो उनको वहां जाने का बड़ा मन था जो उनकी कम्युनिटी ने जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया था ना। तो माँ तो उनकी सब जानती थी, लेकिन पिता को मनाने में जरा जोर तो आया, लेकिन आखिर पिता भी मान गए। मैरी ने इस कॉम्पिटिशन में जाने का फैसला किया। पर जाने में भी छोटी सी कहानी है। हुआ यूं कि जाने के लिए मैरी बस स्टॉप पहुंची तो उन्हें कहा गया कि बस में तो जगह ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनका जाना तो बहुत जरूरी है। तो कंडक्टर ने मजाक बनाते हुए कहा कि बस के अंदर तो जगह नहीं है, अगर जाना ही है तो छत पर बैठ कर जाओ। उसे शायद लगा होगा कि मैरी उतर जाएगी, कौन लड़की छत पर चढ़कर बैठती है बस की। लेकिन मैरी तो खुशी खुशी छत पर जाकर बैठ गई और उस टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया। और यही वो वक्त था जब उनका नाम MC मैरी कॉम पड़ा। जी हाँ, इससे पहले उन्हें सब उनके नाम चुन्नी जान से ही जानते थे। अब बनी वो मैरी कॉम और उन्हें मिला वो नाम जिससे वो अब तक अनजान थी। लेकिन जल्द ही ये नाम विश्व के खेल इतिहास के पटल पर एक नई इबारत लिखने वाला था। इसी सब के दौरान उन्हें मिले वो जो हैं जिन्हें मैरी कॉम कहती हैं रियल चैंपियन। कुछ अंदाजा गई अभी कौन है वो रियल चैंपियन? बताऊंगा इस ब्रेक के बाद क्या रही उनके मिलने जुलने की कहानी। सब कुछ सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स समर के साथ।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और मैं हूं समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। और आज बात हो रही है एमसी मैरी कॉम की।

अरे बाप, 4 घंटे साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है लौटने के 4 घंटे और। तो मैं तो थोड़ा आराम पसंद इंसान हूँ, इसलिए इतनी साइकिल चलानी तो दूर सोच भी नहीं पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप होते तो क्या करते? आप सोचिए, मैं थोड़ा पानी वानी पीकर आता हूँ, सांस ही फूल गया मेरा तो। 4 घंटे साइकिल चला कर गई, 8 घंटे साइकिलिंग एक ही दिन में, कमाल यार, कमाल है। तभी तो उनकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैरी कॉम की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स पर, मैं हूं समर, ये है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज बात हो रही है एमसी मैरी कॉम की। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि मैरी किसी को अपने चैंपियन होने का क्रेडिट देती हैं, कहती हैं कि वही उनके असली चैंपियन, रियल चैंपियन है, वो है उनके हस्बैंड ओनलर। करियर शुरू होने के बाद जल्दी ही उन्होंने शादी कर ली थी, जल्दी ही बच्चे भी हो गए, लगा कि अब तो कोई करियर वरियर होगा नहीं, सब खत्म, वो भी बॉक्सिंग में कोई चांस ही नहीं। कुछ ऑफिस जॉब्स के लिए अप्लाई भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन ओनलर ने उन्हें कमबैक करने के लिए मोटिवेट किया और ट्विंस बेबी डिलीवर करने के सिर्फ एक साल में उन्होंने बॉक्सिंग में कमबैक किया। अब आप सोच सकते हैं बिना पार्टनर के सपोर्ट के ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ट्रेनिंग के लिए टाइम कैसे निकाला होगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम, फिर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना, इन सब के लिए लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती है। और ओनलर मैरिज को बहुत ही आसान और छोटे शब्दों में डिफाइन करते हैं, कहते हैं मैरिज मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना और कम्युनिकेशन है। और ये बड़ा ही ऑब्वियस लगेगा आपको जब मैं आपको नेक्स्ट इंसिडेंट बताऊंगा। शादी के बाद काफी सारे लोग ओनलर के फादर को कहने लगे थे कि आपकी बहू को अब मना कर दो, अच्छा थोड़ी लगता है कि बहू आपकी बॉक्सिंग करे। इस पर वो कहते थे कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जब जो करना चाहे, उसका जो मन करे वो कर सकती है। वाह, ये होती है सोच, ये होता है सपोर्ट, ये होता है परिवार जो एक दूसरे के लिए होता है, न कि एक दूसरे को बांधने के लिए। मैरी के फादर इन लॉ के साथ हुई घटना ने मैरी को काफी झंझोड़ दिया था। क्या थी वो घटना, बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक घटना या कहें कि दुर्घटना जो ओनलर के पिता के साथ हुई, जिससे पूरे परिवार को बहुत झटका लगा, वही बताने के लिए मैं आ गया हूं। एक बार फिर से मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज मैरी कॉम की कहानी, मेरी सुनानी। मैरी ने तो करियर गिव अप करने का सोच लिया था इस घटना के बाद। ओनलर के पिता को किसी ने किडनैप कर लिया था और बिना कुछ कहे, कुछ मांगे, कुछ बोले उन्हें मर्डर कर दिया। ओह, ये सुनना भी कितना स्ट्रेसफुल है। तो परिवार किस मानसिक स्थिति से गुजरा होगा हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन तब भी एक सही लाइफ पार्टनर की तरह ओनलर ने उन्हें संभाला और कहा कि उन्हें रुकना नहीं है, अपने करियर के जरिए अपनी फाइट जारी रखनी है। अगर तुम रुक गई तो लगेगा कि हम टूट गए, तुम्हें टूटना नहीं है। और इस तरह ओनलर के सपोर्ट से मैरी आगे बढ़ती रही और बनी दुनिया की पहली महिला बॉक्सर, जो 6 बार चैंपियन बनी, वर्ल्ड चैंपियन, पहली महिला बॉक्सर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। एक माँ साथ ही 37 साल की उम्र जब खिलाड़ी रिटायर होने की सोचने लगता है, ऐसे में वो आज भी कई गोल्ड अपने नाम करने की दौड़ में बराबर दौड़ रही है, बिना रुके, बिना थके। पर मैं अभी थोड़ा सा थक गया उनकी बात करते करते। चाय कॉफी कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, कॉफी पियेंगे। तो अंतरा जी, कॉफी बनाकर रखिए, मैं आ रहा हूँ। आप ये गाना सुनिए, मस्त रहिए। ये म्यूजिकल ब्रेक सिर्फ आपके लिए। ये शो कैसा लग रहा है आपको, हमें जरूर बताइएगा। कहाँ के बताएंगे, आप तो सब जानते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर। आइए आइए।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: एक ऐसे लेजेंड की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जिनकी कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी दिखाया गया है। वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, और आज कहानी मैरी कॉम की। सुन रहे हैं आप मेरी जुबानी। मैरी कॉम फिल्म के लिए जब प्रियंका उनसे मिलने गई तो वो एक अलग ही छवि लेकर गई थी। प्रियंका को लगा था कि मैरी एकदम ट्रैक पैंट्स पहने हुए होंगी, कुछ ऐसे आएंगी उनके सामने, लेकिन वो आई एक शिफॉन पिंक ड्रेस में, स्ट्रेट हेयर, रेड लिपस्टिक, ग्लॉसी नेल पेंट के साथ। प्रियंका कहती हैं कि मैंने पहली मुलाकात में पहली चीज उनके बारे में जो सीखी थी वो ये कि बॉक्सिंग में अगर हैं तो जरूरी नहीं है कि मैनली हो जाए, फेमिनाइन रहते हुए भी मैरी कॉम हो सकती है और मेडल्स जीत सकती है। सो ट्रू। वैसे प्रियंका का इस फिल्म से अटैचमेंट अलग ही रहा है, क्योंकि ये वो लास्ट फिल्म थी जिसकी नरेशन उनके फादर ने सुनी थी और कहा था कि टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन बन के फिल्म मत करना प्लीज। मैरी कॉम का किरदार दिखाने के लिए वो शिद्दत लाना जो जरूरी है, लगे कि तुमने रोल कन्विंसिंगली किया है, और प्रियंका ने किया भी वही, अपना 100% दिया, और 100% मैरी ने भी दिया। वरना अपनी लाइफ के हर हिस्से को खोल कर रख देना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। जिंदगी पूरी उजागर हुई तो कुछ स्याह पन्ने न खुल जाए, कुछ बातें न बन जाए, ये डर हर किसी को होता ही है। भाई जब आपकी बायोग्राफी बन रही होती है तो जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छुपाया जाना चाहिए, लेकिन मैरी ने डरना सीखा ही नहीं, सीखा है तो सिर्फ जीतना। ठीक कह रहा हूं मैं, ऐसी ही और भी ठीक और सही बातें मैं करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, मिलिएगा यहीं पर। यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैरी कॉम की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: एक खास बात बताऊं आपको, ऑफ कोर्स मैरी कॉम की तो कहानी सुना रहा हूं मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स और मैरी कॉम की कहानी के साथ एक बार फिर से हाजिर है समर, ऑफ कोर्स आपका समर। मैरी कॉम की एक खास बात यह है कि वो स्किपिंग करती हैं ऐसे जैसे कोई चिड़िया। हाँ सच में, वो स्किपिंग करते करते कुछ नए नए तरह की स्किपिंग टेक्निक्स यूज करती हैं। ऐसा लगता है कि ये कैसे किया यार। और तो और स्किपिंग से एक घंटे में वो 2 किलो वेट तक कम कर सकती हैं। अब क्या बोलूं यार सारे एडजेक्टिव्स खत्म भैया मेरे पास तो नहीं है, कमाल की है वो। मैरी ये भी कहती है कि बॉक्सिंग रिंग में ये स्किपिंग काफी सपोर्ट करती है, आपके फीट मूवमेंट लाइट हो जाते हैं जिससे फाइट में आपकी मूवमेंट लाइट हो जाती है और एक बॉक्सर खुद को रिंग में अच्छे से हैंडल कर लेता है। भाई रस्सी तो हमने भी बचपन में बहुत कूदी है लेकिन ये नहीं पता था कि इतने काम की है ये। वैसे उनकी रुचि स्पोर्ट्स के अलावा म्यूजिक में भी है। रोनी सुन रहे हो, रस्सी कूदना यार थोड़ा वजन कम हो जाएगा। चलिए मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया ना कि उनकी स्पोर्ट्स के अलावा म्यूजिक में भी तगड़ी रुचि है, खास तौर से हिंदी के पुराने गाने उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें से उनका पसंदीदा गाना है अजीब दास्तां है ये कहां शुरू कहां खत्म, जिसे वो अक्सर गाती हैं गुनगुनाती हैं। आप भी सुना चाहेंगे तो ये सुन लीजिए।

0: अब ये गाने भी सुन लीजिए जो हम आपके लिए लेकर आए, सिर्फ आपके लिए, रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए
2: सुनिए कहिए कहिए ना।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। एमसी मैरीकॉम की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। शो का नाम है लेजेंड्स। आज ऑफकोर्स बात हो रही है मैरीकॉम की। आज मैरी एक सफल स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फैमिली लीड कर रही हैं। उनके 3 बेटे हैं, पहले 2 जुड़वा बच्चे हैं रियांगपा और नाइनाई, और तीसरा है प्रिंस। नाइनाई के दिल में सुराख का जब पता चला तो उसका इलाज करवाना था। तब मैरी एक कंपटीशन के लिए कैंप में थी। जबूनलर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं उसके साथ हूं और मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस निश्चिंत होकर उस कॉम्पिटिशन पर फोकस करो, उसे जीतना है तुम्हें। तब मैरी को भी विश्वास था कि वो उनके बेटे को संभाल लेंगे। फिर भी खुद से लड़कर अंदर के युद्ध पर विजय पाकर उन्होंने वो फाइट भी जीती जो रिंग में वो लड़ रही थी, क्योंकि किसी और पर विजय पाने के लिए पहला पड़ाव भी यही होता है कि आप खुद विजयी हों आपके भीतरी द्वंद से। और साथ ही उनकी तैयारी और ट्रेनिंग तो है ही कि जो उन्हें चैंपियन बनाती रही है। उनके नाम कितने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको गिनने के लिए लिस्ट बनानी पड़े तो आप तैयारी करके रखिएगा। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, तब तक आप भी कॉपी पेन ले आइए। मिलता हूं आपसे यहीं पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये महफिल नाम है इसका लेजेंड्स। मैं हूं समर आपके साथ।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वो है मैग्निफिसेंट मैरी, जिनकी कहानी सुना रहा है समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। वेलकम बैक। अब वो नाम क्यों दिया गया मैग्निफिसेंट मैरी, उन्हें क्यों कहा गया, आप समझ सकते हैं उनके अचीवमेंट्स की वजह से। भाई इन्हीं में से कुछ एक के नाम मैं आपको गिना देता हूँ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड, मैग्निफिसेंट मैरी, आईबा अवार्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज है। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबा ने मैरी कॉम को अवार्ड दिया, पहली आईबा लेजेंड्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। और आईबा ने ही मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया 2016 के आईबा विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। अब क्या है कि मैं खुद ही समझते हुए रुक जाता हूँ, क्योंकि उनके नाम से जुड़े अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की फेहरिस्त बहुत लंबी है साहब। पर आपको छोड़ देता हूँ इन गानों के साथ और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा एक और लेजेंड की कहानी लेकर, एक महान हस्ती की बातें और किस्से लेकर। तब तक आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और जाते जाते कर जाइए कुछ वादे। आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.
0: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Masi 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masi 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

0: साथ शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email WhatsApp

0: सुबह सुबह आके चीज बड़ी है मस्त, चीज बड़ी है मस्त, उफ यहाँ पे कॉफी के दो प्याले दो घूंट नहीं हुए हैं और ये चीजों की बातें हो रही हैं, वो भी मस्त मस्त।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस
0: एंड आई एम एक्चुअली बिहेविंग लाइक वन ऑफ दोस वेरी ओल्ड पीपल, यू नो, जो सुबह सुबह ग्रम्बलिंग कर रहे हैं ना, है ना, कर रही हूँ ना।
2: I totally felt like that all of a sudden. I'm like, yeah, भाई, of course, this is called self-love. हम दो मस्त मस्त चीजें. Like, what do you need on a Friday morning? It's Renuka and Antra and Masti madness in your life.
0: Yeah, and this Saturday, Sunday को कि साड़ी गली आया करो. कभी साड़ी गले भी पुल के आया करो.
2: मैं तो कहती हूँ, मेरा तो सजेशन है, like, एक मंडे ट्यूसडे
0: जी,
2: फिर उसके बाद सैटरडे संडे बीच में
0: जी,
2: फिर वेंसडे थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे. हाउ अबाउट दैट? लाइक इट्स सच अ कूल थिंग
0: यार. मुश्किल से 7 days ऑफ द वीक याद हुए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे वेंसडे थर्सडे सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे. क्या बात है, मतलब क्रिएटिविटी एट इट्स चरम सीमा है ना.
2: अब मतलब जो क्या मरता क्या ना करता वाली बात हो गई. अब यही सोच ही सकते हैं,
0: काम
2: होगा तो है नहीं.
0: नहीं नहीं, जो चल रहा है 7 दिन हफ्ते के, चलने दो, प्लीज चलने दो.
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भारत जाते हैं ना जब, एंड दिस इज टिपिकल आउट ऑफ दिस कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में बात करते हैं ना, एनआरआईज भारत आए हैं, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये वो, यू नो, बिकॉज कमाना तो डॉलर्स में है और खर्चना है रुपए में, इसीलिए जितने भी अमीर इंसान हो वो जरूर एनआरआई वापस जाके ये सारी अपॉइंटमेंट्स कराता है.
2: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है.
3: मैं तो हमेशा, कोई ऐसा बोलता है ना तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि तुम इंडिया में रहकर चिप्पू सो सकते हो, हम बाहर जाके नहीं हो सकते. हाँ. हम ऐसा नहीं सोच सकते. ये कौन सी बात हो गई?
1: बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जो हमें फायदे हैं ना, जो घर बैठे बैठे मतलब काम हो जाते हैं सारे के सारे इंडिया में, वही फायदा रिसेंटली में एक रशियन औरत को पता लग गया. अब ये रशियन औरत गई भारत और इसको कराना था ब्लड टेस्ट, तो इसको किसी ने बोल दिया घर आके ले जाएगा ब्लड टेस्ट ना, वो आप फास्ट करके सुबह सुबह उठो, बताओ कितने बजे आना है टेक्नीशियन ने. वो तो मतलब रशिया से आई हुई, रशिया जहां पर मतलब कुछ भी मिलना कितना ज्यादा इट्स अ पेन, राइट? सो इसने कहा भैया वाह, इंडिया तो 2050 में रह रहा है इस टाइम पर. और उसने वो टेक्नीशियन की फोटो ली, वीडियो लिया, क्या क्या, और वायरल होगी सोशल मीडिया पर सिर्फ ये दिखाने के लिए. यार अंतरा, तू और मैं 100 बार करा चुके हैं, हमने कभी ये बात सोची भी नहीं कि हम उस आदमी की फोटो लेके अपने सोशल मीडिया में डालें और वायरल हो जाए. मतलब व्हाट्स मिसिंग?
3: आई थिंक रेणुका, मैं और आप तो ट्रोल ही हो जाएंगे कि हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तानी ऐसी exactly. चीजों के बारे में तुम पूछो, बिकॉज शी इज रशियन एंड शी फाइंड्स इट्स अम्यूजिंग. आई थिंक दैट इज द रीजन शी गॉट वायरल.
1: हाँ, पर मतलब 165,000 व्यूज और उसमें इंडिया इज हेवन फॉर सर्विस, ये वो. जब हम कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन ये बोले, वही बात है, हर जगह, मैं कहती हूँ हर जगह पार्शियलिटी, हर जगह रेसिज्म चल रहा भाई. ठीक है कि नहीं?
3: और वैसे भी हमें बहुत कुछ बुरा होने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी वायरल हो जाता है रेणुका आज की डेट में. मतलब ऐसी ऐसी चीजें वायरल हो रही है कि हम मस्ती मैडनेस में कितनी बार बात कर चुके कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लाइक व्हाई आर पीपल वाचिंग दिस, व्हाई इज इट गोइंग वायरल एंड वी स्टिल डोंट नो व्हाई.
1: हम कौन सी दुनिया में है मुझे नहीं पता, बट कभी तो समझ में आएगा कि क्या चलता है क्या नहीं.
3: आई डोंट थिंक सो.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: कभी पकड़े नहीं जाना है ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन पकड़े तो कभी ना कभी जाते ही है.
3: This is Musty Madness on Radio Musty 24/7.
4: कहते हैं ना, भगवान का हाथ वहां पर रह जाता है जहां पर इंसान का हाथ सफाई कर जाता है. वाह वाह वाह, तुम्हें समझ आया ना मैं क्या कह रही हूँ?
2: ओके, और रेणुका गोइंग द भगवान मोड, बट यहाँ पर इंसान का हाथ ही है और बहुत सफाई से ये बंदा अपना हाथ यूज कर रहा था. खबर है ग्वांगजू साउथ कोरिया में एक जगह है, तो वहां के एक बैंक की, ठीक है. तो अब इस बंदे ने क्या किया, सो ये बंदा वाज इन चार्ज ऑफ द वॉल्ट, जो होता है ना जहाँ पे सब अपना पैसा जाके रख के आते हैं एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज द होल एंड सोल इन चार्ज ऑफ इट. तो कोई उसके ऊपर सुपरविजन नहीं, कुछ नहीं, इसको बिल्कुल पूरे भरोसे से कहा कि तू अपना अपने हाथों से रख के आ, और किसी को कैश चाहिए तो निकाल के ला एंड ऑल दोस थिंग्स. ये बंदा क्या करता था, इसने क्या है कि जब आप कैश के इतने आसपास रहते हो तो कभी ना कभी ये एक स्वूपिंग सी फीलिंग आ ही जाती है, एक फ्लीटिंग इमोशन आ जाता है कि यार इसमें से अगर मैं एक 50,000 का नोट निकाल दूं, किसको क्या ही पता, मतलब who cares, like who is watching. तो ये शुरू हुआ वहां से, धीरे धीरे करते. तो अच्छा, ये ऐसा भी नहीं करता था बंदा कि सिर्फ नोट निकाल रहा है, he is replacing the notes with a fake toy note जिसमें पिक्चर की जगह डक की पिक्चर बनी
4: Monopoly.
2: almost similar to that.
4: हाँ.
2: वो उसको जब एक 50,000 करता था तो एक स्लिप भी कर देता था वापस. हाँ. कि यू नो कीपिंग माय कॉन्शियस क्लियर, मैंने वापस डाल दिया है, हालांकि वो सही वाला नोट नहीं है, बट इट इज देयर. करते करते $45,000 सर, ऐसे धीरे धीरे करते करते. सो और ये ऑडिट में भी पता नहीं चला.
4: हाँ.
2: ये किसी एक कलीग ने इसका बहुत अनयूजुअल सा बिहेवियर देखा एंड नोटिस किया. काफी दिन इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया, तब जाके पता चला वॉल्ट में इतनी इतनी गड्डियां सारे डक वाले पिक्चर्स के साथ उसमें लगी हुई है. So he was sent to, he was fired, sent to jail. He paid back also the whole amount he was asked to buy, वापस कर and all those things, सब कुछ हुआ. मैं कह रही हूँ कि ये कैसा बैंक है, कैसा ये बैंक है जहाँ पे उनको कोई पता ही नहीं है, और ये भी नहीं कि ऑडिट हो रहा है उस बैंक पे, बंदा कोई और, उसको शक हुआ, शक के बिना पे इसको पता चला.
4: हाँ, ये सही है. मतलब वो, मतलब अब क्या कहें, दैट मींस कि वो इतना विश्वास था आपस में सब लोगों के कि वो जब देखते थे कि हाँ ये गड्डियां यहीं की यहीं पड़ी हैं तो पड़ी हैं, किसी ने उठा के नहीं देखा कि ये बतख में कन्वर्ट हो गए हैं सारे के सारे पैसे. और बाकी जो असली है वो तो स्विम करके चले गए हैं.
2: I know.
4: है ना, दिल धड़कने दो का ये गाना, उफ बहुत ही मस्त गाना है. रेडियो मस्ती 24/7, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर. मेरी आवाज धीरे धीरे खुल रही है क्योंकि लग रहा है जैसे सवेरा हो रहा है.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: और अब मैं नीट जो एग्जाम होता है फुल इंडिया का उसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता था अंतरा ऐसे रिएक्ट करेगी, लेकिन नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई और बात नहीं कर रही हूँ, मैं नीट से रिलेटेड एक आपको खबर दे रही हूँ। बस
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडम।
3: भाई फ्राइडे वाले दिन जब आप नीट बोलते हो तो दो ही ऑप्शन आते हैं मेरे पास।
1: नहीं नहीं, लेट्स कीप दिस शो वेरी नीट। ओके, अब ऐसा है कि एक है डॉक्टर गणेश बरैया, ओके, एंड ही इज 3 feet tall। तुम सोचो कि 3 foot के हैं वो, और वो डॉक्टर है। अब जैसे कि डॉक्टर गणेश मैंने बोला तो असली डॉक्टर है। नाउ व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट ही हैड अपीयर्ड फॉर हिज नीट एग्जाम एंड ही वाज रिजेक्टेड बिकॉज वो 3 foot के हैं। तो इमेजिन सारे के सारे ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दिया नहीं जी सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये क्या बात हुई। एंड देन ही वन दैट हिस्टोरिक कोर्ट रूलिंग एंड दिस हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने भावनगर मेडिकल कॉलेज से अपने MBBS करी एंड नाउ ही इज अ मेडिकल ऑफिसर। बट लोगों, खबर कुछ ऐसी है कि क्यों मना हुआ था, बिकॉज दे सेड कि इसकी हाइट की वजह से ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल द इमरजेंसी केसेस, राइट। क्योंकि अब वो मतलब आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ एनीथिंग, देयर इज नो बॉडी शेमिंग, बट इमेजिन वो आपकी इमरजेंसी में लोग लेट के आ रहे हैं और वो डॉक्टर अगर 3 foot का है तो वो कैसे कूद कूद के देखेगा ना कि यार हाउ टू मैनेज द केस, राइट। बट सच एन अमेजिंग इनक्रेडिबल जर्नी दैट ही हैज, बिकॉज डिस्पाइट ऑल दैट ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग एंड ही इज गॉट सम अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज टू शेयर फॉर सो मेनी इयर्स नाउ। पिछले 2 साल से ऑफकोर्स ही इज अ फुल फ्लेज्ड MBBS डॉक्टर एंड कर रहे हैं वो काम। तो सोचिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हाइट कम है तो मतलब ये क्या ही काम करेगा, एंड देन द पर्सन जस्ट takes us forward.
3: Haan, but because the reason also which they gave, like even I cannot understand. ठीक है, मतलब आप सोच रहे हो इमरजेंसी और इन सब चीजों के लिए, but there are so many departments. डॉक्टर जब हम बोलते हैं इतनी सारी चीजें हैं जो एक डॉक्टर करता है, अगर वो नॉर्मल फिजिशियन भी है उससे हाइट का क्या लेना देना, if he is you know doing his job well.
1: Actually that's where we can challenge कि male candidates को 157.5 cm होना जरूरी है for MBBS and females को 144, और ये चीज किताब में लिखी हुई है। सो नाउ दैट विल अंडरगो अ चेंज बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिक जजमेंट। इसी के साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना बहुत ही मस्त आने वाला है। देखते हैं, सुनते हैं और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: వెల్కమ్ బ్యాక్ రేడియో మస్తి 24/7 ఆ అంటే అమలాపురం ఆ
1: క్రేజీ దునియా క్రేజీ ఖబరే ఔర్ హమారా యే క్రేజీ షో
0: వాట్ ఇస్ దిస్ అంటే అమలాపురం
1: రేడియో మస్తి 24/7
0: వాట్ అంత్రా
2: I love the energy of this gana. I mean, it just brings out that ekdam aisa lagta hai ekdam baal baal khol ke nachna shuru kar do waisa wala gana hai.
0: Okay. And this ante ante what is this yeah? Seriously, no, I can't handle this.
2: It builds up the music. It's called building up the hype. Ante ante.
0: ओके हमने पूरा गाना सुना है अंतरा, वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऐसा. अब मैं अंतरा कैसे बुलाऊंगी? आ अंटे अगली खबर बता अंटे.
2: ओके तो खबर कुछ ऐसा है कि भाई आजकल जो है लोग अलग अलग तरीके, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, एंड ये एक नया तरीका निकला है. अब कोर्ट केसेस जब होते हैं तो देखो, एक तरीका होता है कि आप जज वज का कनेक्ट है आपका बहुत अच्छा वैसा, तो थोड़ा सा यू नो अंडर द टेबल ओवर द टेबल ये बहुत सारी सच्ची हमने सुन रखा है, होता है नहीं होता है.
0: बिल्कुल.
2: नाउ दिस इज न्यू, 65 ईयर ओल्ड कर्नाटका की ये खबर है. ये आंटी जो है इनको गिरफ्त में लिया गया. Why? Because what she was doing, she was performing black magic.

0: magic inside the court to influence the outcome of a civil case.
1: Wow, very creative. Very creative.
0: I know.
1: Okay.
0: I mean, yeah. So now, there are two ways of taking it. Ek to hai ki yaar isko, you know, rafa dafa karo.
1: Hmm.
0: But there's also the side where people who do not believe in black magic, but कोई जब उनपे करता है, जब पता चलता है ना किसी ने आपके ऊपर कर रखा है, you suddenly start believing in it.
1: हाँ, ये तो होता है. वैसे तो बड़े आराम से बोलते थे ये सब बकवास है, लेकिन जब खुद की जिंदगी थोड़ी हिली पड़ी होती है ना, किसी ने ना मेरे पे काला जादू किया है. वाह वाह, क्या बात है.
0: ऐसे भी कर रहे हैं लोग बैठे बैठे, मतलब जस्ट इमेजिन सामने वो पूरा कोर्ट केस चल रहा है, वो बैठे बैठे अपना ब्लैक मैजिक कर रही है. वो क्या क्या मूवीज में नहीं दिखाते, वो गुड़िया लेके आते हैं उसमें पिंस चुभोते हैं.
1: बट एक्चुअली इट्स इनफ टू मेस अप विद द ब्रेन ऑफ द अदर पर्सन. अगर तुम उसके सामने बैठे हुए सिर्फ काले कपड़े पहन के, बाल खोल के, दो चार बिंदियां लगा के, और मे बी गले में एक स्केलेटन्स की माला पहन के, और फिर उसमें एक गुड़िया लेके पिन में डालो ना, पिन डालते जाओ, तो वैसे ही सामने वाले की खिसक जाएगी. भाई ये मुझे क्यों देख रहा है करते टाइम, कर ले जो करना है मुझे, मत देखो. It's so easy to mess up. On Radio Masti 24/7, guys. We'll take a short break. आपको मिलेंगे इस घंटे के उस पार. कहीं जाना मत. अंटे चले अंटे.
0: Yes अंटे. Hit us on the gram. It's Radio Masti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Masti 24/7 Singapore. Check it out.

0: एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 हमारे दूसरे घंटे में। जी हाँ, आपका स्वागत है यहाँ पर। और मैं और अंटे दोनों यहाँ पर हैं, इन केस यू वंडरिंग व्हाई आई एम कॉलिंग हर अंटे, वेल यू गॉट रेफर टू हमारा, चलो ऑनकोर सुन लेना अब आप सैटरडे शाम को, आपको पता लग जाएगा, है ना।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है। गैस फ्राइडे को इवन सिंपल वर्ड लाइक अंटे साउंड्स वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाई।
0: ओके, आई एम जस्ट गोना गो टू इंडिगो। इंडिगो ने कुछ समय पहले बहुत ज्यादा कितना दुनिया में तूफान मचा दिया था, इंडिगो एयरलाइंस की बात कर रही हूँ मैं। अभी दोबारा से एक ऐसी खबर निकली वहां से कि इंडिगो एयरलाइंस का एक आदमी, उसने रिजाइन किया है स्टाफ ने। ओके, एंड दिस स्टाफ मेंबर हु वाज वर्किंग एट बेंगलुरु एयरपोर्ट, ही रिजाइन बिकॉज उसको उसके डायरेक्टर ने ये बोला कि तुम अपने कॉलीग के पांव छू के माफी मांगो क्योंकि तुमने आज यूनिफॉर्म की टाई नहीं पहनी है। सो ही सेज कि मैं काम कर रहा था टर्मिनल में, एंड देन द डायरेक्टर केम एंड ही काइंड ऑफ आस्क्ड मी, तुमने टाई नहीं पहनी है। सो यू नो दे वेयर दैट दोस ग्रीन जैकेट्स, राइट, व्हिच इज द फ्लोरोसेंट ग्रीन बिकॉज दे वर्क ऑन द टर्मिनल द थिंग, राइट। सो ऑब्वियसली सो एकदम देखा सुपरवाइजर ने तो भाई नहीं पहनी हुई थी, तो जस्ट जो लड़की रिस्पॉन्सिबल थी फॉर चेकिंग द यूनिफॉर्म व्हाटएवर, सो उससे पूछा डायरेक्टर ने कि व्हाई इज ही नॉट विद हिज टाई। सो शी सेड सॉरी आई डिडंट नोटिस टुडे, तो ही सेड ओके से सॉरी, तो उसने बोला आई एम सॉरी कि आज मैं भूल गया अपनी टाई, यू नो। आफ्टर दैट ही सेज उसके पांव छू के माफी मांगो। आई सेड व्हाट इज दिस पांव छू के, यू नो व्हाट इज दिस बिजनेस। सो द गाय सेड सॉरी सर ये नहीं हो पाएगा, माय सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद वर्क प्लेस डिग्निटी, एम्प्लॉई राइट्स, कॉर्पोरेट कल्चर, इन सारी चीजों की बात हुई। ऑब्वियसली ही वेंट एंड पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया कि मेरे साथ ये हुआ है, एंड देन ही रिपोर्टेड टू द एथिक्स एंड कंप्लायंस कमिटी, राइट, हु एज यूजुअल नथिंग सरप्राइजिंग, जब एक डायरेक्टर और बड़ा आदमी तुम्हारे सामने इन्वॉल्व होता है तो उनको कैमरेज में कुछ दिखता ही नहीं है, उनको कभी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, यू नो। सो दे सेड सॉरी वी कांट सी एनीथिंग, एंड दिस गाय सेज 3000 कैमरास हैं उस जगह पर, ओके, एंड दे कुड नॉट फाइंड कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हुआ है। ओके, मैं क्या कह सकता हूँ, सो हियर आई गो। वेल, कहने की बात यह है कि कॉर्पोरेट कल्चर में वही होता है जो मंजूरे तुम्हारे से ऊपर वाले का होता है, राइट और रॉन्ग बताओ।
1: और हायरार्की ऑलवेज वर्क्स लाइक एवरी सिंगल टाइम एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। भाई वो एक बार सॉरी बोल चुका है, एंड व्हाट आर दीज पीपल हु आर स्टिल इन स्कूल, भाई वो बड़े ही नहीं हुए, आई थिंक दीज आर द पीपल जो कभी बड़े ही नहीं हुए, भाई वो सॉरी बोल दिया है, खत्म करो आगे बढ़ो, व्हाट लाइक व्हाट इज दिस पैर छू के माफी मांगना एंड ऑल्सो।
0: हां
1: बट बंदा एटलीस्ट उस बात पे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही था,
0: बिल्कुल सही है, एंड मोर पावर टू हिम। छोड़ो भाड़ में जाए, जो लोग समझते हैं कि एक कॉर्पोरेट जो कंपनी है उनके बाप की जागीर है, बोलो एक दिन बेटा तुम्हारा भी आएगा।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हार दे रही तू
1: Tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
2: भाई कैसी कैसी बातें वारदातें होती रहती है, इसीलिए इनको जगह मिलती है हमारे इस खास प्रोग्राम में. नाम है मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंता.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24.
4: जी बिल्कुल सही फरमाया बिल्कुल अंतरा जी ने कि यही होता है फ्राइडे को.
2: अंते ना बुलाने के लिए.
4: क्या खबर लाई हो बताओ.
2: खबर कुछ ऐसी है कि ये बंदी, ठीक है, इसको हो गई 25 साल की जेल हुई. अब क्यों हुई वही कहानी है. तो इन्होंने पॉइजन कर दिया अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड को. क्यों पॉइजन की,
4: क्यों,
2: ठीक है, क्योंकि क्या है कि रायली जो है, जो इसका बॉयफ्रेंड था, ही वाज अबाउट टू इनहेरिट $30 million. ठीक है, एंड उसको पता चला कि ही प्लान्स टू लीव हर आफ्टर इनहेरिटिंग द $30 million. ठीक है, तो मैडम ने सोचा कि कर देते हैं यहीं पे, अभी साइड टाइम है, कल्टी कर देते हैं उसको साइड, एकदम उसमें सिनेरियो से ही हटा दो इससे पहले कि वो मेरे से ही हट जाए, लाइक ब्रेकअप हो जाए. सो पॉइजन्ड हिम, मर्डर के केस में ये अंदर गई. नाउ ट्विस्ट तब आया जब ये इन्वेस्टिगेशन जब और थोड़ी सी डीप हुई और ये सच्चाई सबके सामने बाहर आई दैट ये इनहेरिटेंस तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी.
4: ओ नो.
2: So Riley apparently had been deceived by this fraud, you know, वो scam emails होते हैं कि किसी distant relative का fortune उसने अपनी जायदाद इसके नाम पे कर दी है $30 million की, है ना? And they both believed that what happened was true. एंड ये फेक इनहेरिटेंस के चक्कर में बंदा तो गया, बंदी जेल में गई, एंड देयर इज नो फॉर्च्यून टू क्लेम आल्सो.
4: बट एक्चुअली इसीलिए मैं तुम लोगों को बताती नहीं हूँ, जब मेरे को वो ईमेल्स आते हैं ना, नाइजीरिया में मेरे चाचा जो किंग थे वो मेरे नाम की सारी जागीर छोड़ गए, मैं तुम लोगों को बताती नहीं हूँ क्योंकि इंसान जान से जा सकता है यार. बिल्कुल बिल्कुल. कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड विद ऑल माय मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस. या नॉट इवन एलन मस्क. या रेडियो मस्ती 24/7, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर.

0: All right, welcome back. Radio Masti 24/7 पर. Of course, मेरे साथ जो काम करता है वो feel good ही करता है. है ना अंतरा, you feel good? बोलो अंतरा, बोलो ना.
1: This is कुछ बोला था यहाँ पे. क्या मेरी silence में ही मेरा जवाब नहीं था?
0: All right. So भाई ऐसा है कि मैं आपको लेके जा रही हूँ कर्नाटका ग्रामीण बैंक.
1: Okay.
0: जहाँ पर ऑब्वियसली कर्नाटका में ही है वो. और वहां पर क्या हो रहा है दैट इनफैक्ट आई वॉच दिस वीडियो. राइट, सो द बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर की बात हो रही है जो बैंक के अंदर है, वो जो मैनेजर है वो ना जल्दी जल्दी जल्दी चाबी कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है करके दरवाजा बंद कर रहा है. वो ग्रिल्स वाला जो गेट होता है ना उस पे लॉक लगा रहा है कि आज कोई घर नहीं जाएगा जब तक काम खत्म नहीं होगा. हाँ, तो पीछे से एक आदमी जो मतलब वीडियो ले रहा है वो ये बोल रहा है कि सर मेरा काम खत्म हो गया है, मेरी 5 बजे शिफ्ट खत्म होती है, अब 6 बज रहे हैं, मुझे अब आप घर जाने दो. कहता नहीं हुआ है तुम्हारा कोई काम खत्म. और फिर उसके बाद में ही कंटिन्यूस टू लॉक. ऑलराइट, और वो जो जो वहाँ का चपरासी है जो चाबियाँ रखता है मेन डोर की, उसको कहता है दूसरी डुप्लीकेट चाबी कहाँ है. मतलब बेसिकली ही सेज आज कोई घर नहीं जाएगा जब तक काम खत्म नहीं होगा. जस्ट इट वाज सो फनी. या इट्स लाइक फोर्स. अच्छा, उसने ये भी बोला सर ए, मैं ओवर टाइम कर चुका हूँ, मेरे को और ओवर टाइम नहीं करना. कहता करना पड़ेगा. उसने कहा सर ओवर टाइम करना इज नॉट मैंडेटरी. कहता है जब काम खत्म नहीं हुआ आपको ओवर टाइम के पैसे दिए जाएंगे, जाइए ओवर टाइम कीजिए. एंड लाइक ही डजंट वांट टू गो, आई मीन ही डजंट वांट टू, यू नो व्हाट टू
1: अगेन, हु आर दीस पीपल हु हैव स्टिल नॉट गॉट आउट ऑफ स्कूल. आई मीन हु आर दिस पीपल. ये मतलब एडल्ट्स के साथ ये कैसा तरीका हुआ करने का कि आप and it's so funny, like I want to laugh on him. Like, तुम दरवाजा बंद कर रहे हो, चाबी डुप्लीकेट चाबी ले रहे हो. I mean obviously he will. What right have you got to do so?
0: Try करो ना, Gen Z के साथ करो. Millennials तो बेचारे फिर भी अपनी टैक्सी कैंसिल करके बैठ जाएंगे काम करके. Gen Z क्या करेंगे, वो सीधा उठेंगे और बोलेंगे सर उसको बोल दो वो मिलेनियल है वो कर देगा, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो अपॉइंटमेंट है.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: And on Radio Musti 24/7, Antara, अभी तक मेरे को hug करे जा रही है, hug की thank you for being such an amazing boss, thank you.
2: मस्ती madness, जहाँ news भी होती है.
3: वो उस दिन आप जो बंद करके गए थे तो.
2: अच्छा वो मैंने बताना नहीं. Sorry.
1: तुम लोगों को बंद करना आसान है, हैं? कौन तुम लोगों में से ऐसा है जिसको बंद करके मैं घर जा सकती हूँ?
2: उल्टा एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा होता है. ये लोग कहते हैं बहुत परेशान हो गए तुम लोगों से,
1: निकल जाओ
2: बाहर से, ना लॉक करके चले जाओ
1: सीरियसली. और प्रॉब्लम सारी ये है कि तुम लोगों को अगर बंद कर दिया तुम तो माइक ऑन करके दुनिया भर को बता दोगे. कैनॉट रिस्क, स्टेशन कैनॉट रिस्क.
2: That is true, but यहाँ पर रिस्क की ही बात हो रही है. पूरा का पूरा रिस्क एक ऐसी जगह और एक ऐसा काम जिसके लिए मैं कभी भी वॉलंटियर नहीं करने वाली हूँ जिंदगी में. मर भी जाऊँ फिर भी नहीं करूंगी. तो कुछ ऐसा है, जापान चलते हैं, ठीक है?
1: हाँ.
2: जापान में बहुत सारी अनयूजुअल चीजें होती रहती हैं, वहां से काफी सारी खबरें आती रहती हैं. सो भाई ये एक प्रॉपर्टी ओनर्स की गुहार है कि कई सारी डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज होती है जो बिक नहीं रही होती है.
1: हाँ.
2: उनमें से होती है ये जो हॉन्टेड कहलाई जाती है.
1: यस,
2: लाइक द प्रॉपर्टी. अब वो भी तो किसी ना किसी की प्रॉपर्टी होगी जिसको हॉन्टेड करार दे दिया गया है कि भाई इधर तो मतलब किसी प्रेत आत्मा का चक्कर है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड बहुत ही एक ईजी सी वाइब आती है देखते ही, एकदम वैसा सेक्लूडेड सी जगह पे होता है. तो भाई इन्होंने निकाला है एक जॉब प्रोफाइल, स्पेशल इंस्पेक्टर्स जो है उनको चाहिए एंड वो हायर करते हैं टू स्टे ओवरनाइट इन प्रॉपर्टीज में. ठीक है, इनको कहा जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट करो अपने ऑब्जर्वेशन, अपने इंस्पेक्शन प्रोसेस में कैमरा वगैरह सब कुछ अपना प्लेस करो, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट प्लेस करो. तो पूरी एक रात उनको उस प्रॉपर्टी पे गुजारनी है. इफ नथिंग अनयूजुअल इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं और फिर प्रोस्पेक्टिव बायर्स को दिखाया जाता है कि देखो ना ये आदमी तो जिंदा निकला है एक दिन में, तो तुम किस बात से डर रहे हो?
1: बिल्कुल ठीक बात है. और नहीं नहीं निकला तो
2: उसको बताया नहीं ना भाई, तो मेरा सवाल है. नहीं निकला तो मैं तो कब, अगर मैं उधर भूत नहीं भी हुआ, जस्ट टेल मी दैट इट्स हॉन्टेड एंड मैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं अगले दिन निकलूंगी बाहर.
1: Really? Imagine, नहीं निकला तो अच्छा चलो हमारा ना फेल हो गया एक्सपेरिमेंट, कोई नहीं एक और बंदा ट्राई करते हैं आज के दिन में.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: तेरे पास कौन सा फोन है अंतरा? कौन सा फोन है तेरे पास, बताना एक बार प्लीज, बताओ बताओ ना।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी
2: सैमसंग। लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा फोन ना 2276, जी हाँ 22, मतलब बोलना भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी चल रहा है 2026, बात कर रहे हैं 2276 की। तब की जनरेशन तुम्हारा फोन नहीं देख पाएगी, लेकिन मेरा फोन देख पाएगी। पूछ क्यों?
4: क्यों?
2: इसलिए क्योंकि आईफोन 17 उसको एक टाइम कैप्सूल में बंद किया गया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने 250 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, राइट? द 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका वो सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 4th of July। ओके, उस दिन उन्होंने क्या किया है, दे बरीड फिलाडेल्फिया हिस्ट्री पार्क में एक टाइम कैप्सूल, बड़ा सा टाइम कैप्सूल बनाया और उसको वहां पर दबा दिया। उसके अंदर बड़ी सारी चीजें डाली हैं, आर्टिफैक्ट्स, ओके, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट यूएस स्टेट्स, और उसी के अंदर एक आईफोन 17 भी डाला गया है। अब

0: 5 में बच्चा कोई पैदा हुआ है, हाँ, उसके सामने वो काला वाला फोन रख दो, सरकारी वाला जो 90s वाला है, ठीक है, और हाँ, बोलो दबा के बेटा, हाँ दबा के बेटा तेरे लिए रखा है, इसमें बड़ा कुछ होता है, जब तो हम मर जाएंगे ना और तू जिंदा होगा तब तू इसको देखेगा, तो तू कितना समझ पाएगा टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या घंटा समझेगा वो, क्या समझेगा?
1: I know, like completely agree with it. मैं तैयार कर रखा था अपने दिमाग में जवाब कि Samsung believes in evolvement. उन्होंने क्या time capsule evolve करो और उस generation के हिसाब से अपना जो है smartphone smartly present करो.
0: देखिए अब Samsung के evolution की बात ना करें आप iPhone के सामने, ना ही करें तो better है. iPhone rocket पे पहुंचा होगा तब तक.
1: देख ही लिया जाएगा
0: कौन ना तू होगी ना
1: आईफोन रॉकेट पे पहुंचा होगा. सैमसंग ने कहा कि भाई हम मार्स में बैठे हुए तो रॉकेट तक पहुंचा हुआ है.
0: देखो आज के दिन लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम दोनों से कोई नहीं होने वाला टू सी दैट डे. ओके
1: ट्रू दैट.

0: शरारा।
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: ओह माय गॉड, रिसेंटली एक रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में मैंने बात भी की थी, तो लेट मी प्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ रेणुका एज़ वेल।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: अरे हम तो खुद ही एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन है रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, चल रहा है मस्ती मैडनेस। मस्ती मैडनेस आपका वो फेवरेट शो है जिसमें सारी दुनिया भर की अजीब और गरीब बातें आती है और बॉलीवुड का नामोनिशान नहीं होता। उफ, सो रिलैक्सिंग।
0: मैंने इस हफ्ते अपने शो पर पूछा था एक सवाल कि मुझे गिला और शिकवा दोनों हैं, अब दूसरे से तो पूछ नहीं सकती, इन्हीं से पूछती हूँ कि भाई एक शकीरा दूसरी रेणुका, दोनों ने बताने से इनकार कर दिया है कि ये हमेशा इतनी यूथफुल कैसे दिखती है। डिड यू सी फीफा के हाफ टाइम में शकीरा को?
2: ओ माय गॉड, हिप्स डोंट लाई बेबी, हिप्स डू नॉट लाई, एब्सोल्युटली।
0: यू नो व्हेन She came when I was a teenager, she still looks like that. I mean, how? It's just insane.
2: नहीं, तूने मेरे बारे में तो
0: शकीरा से पूछ नहीं सकती क्योंकि वहां तक पहुंची नहीं और ये बताएंगी नहीं, इन्होंने तो मना ही कर दिया है कि just figure it out yourself, guys.
2: At least तूने ये तो नहीं बोला ना सबको कि जब तू टीनेजर थी तब से मैं वैसी लगती हूँ। आई होप नॉट।
0: But having said that, bhai, so once everybody saw Shakira and so sare jitne bhi ye jo aesthetic wale clinics hai, everybody is kind of doing their promotion saying you know isne sabse sahi kara rakha hai, like pata nahi chalta hai, it's not like too much. But there's this influencer now people sometimes they don't know that they have gone overboard, lip fillers karaye, theek hai, $50,000 रेणुका शी स्पेंट ऑन दिस लिप फिलर।
2: वाओ,
0: होंट जो है ना वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए फिलर के बाद कि बहन से मुंह बंद नहीं हो रहा।
2: I'm just imagining. Okay, go on.
0: Yeah, I have the picture also.
2: Go on. This is so funny.
0: And I mean, like, how do you know where to stop these people? And why are you doing this with yourself? Where what happened to tumhara body mandir hai?
2: देखो अंतरा, मैंने सोच लिया जिंदगी में मैं किसी और को जज नहीं करूंगी, ठीक है? I have reached that stage where I have decided each one to himself. अगर उसको इतनी खुशी मिल रही है होंठ खोल के, मुंह पूरे दिन खोल के चलने में, तो करने देना यार, हमारा क्या जा रहा है? Nothing. It's okay.
0: I mean, okay, so you want me to look at the positives?
2: Yes, yes. उसके होंठ बड़े बड़े हैं।
0: Interesting conversation ये बन सकता है।
2: देखो, सोचो, अब तुम सोचो जो वो कर सकती है उन बड़े बड़े होंठों के साथ, तुम कभी नहीं experience कर पाओगी।
0: हम कर सकते
2: हैं। हाँ, see, now suddenly you become jealous of the whole situation.
0: Not really though, but then yeah,

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: तोहरी लचके जब कमरिया हसा।

0: तो भाई चलिए, इस समय हम आपको लेके जाएंगे चाइना, जहां पर वाकई जिल्ला हिलाई लिया इस बंदे ने।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: दिस इज वाओ, जिल्ला ही हिलाया कि और
0: तो मैं कहती हूँ सीधे मुंह से, आई कैन नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी न्यूज़। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट एंड हिज ग्रेजुएशन सेरेमनी। ओके, नाउ द गाय वॉक्स ऑन स्टेज विद अ शोल्डर पोल, ठीक है, और वो पोल पे, वो जो लकड़ी का लंबा सा वो एक शोल्डर पे उसने अपना पोल रखा हुआ है, उसके ऊपर 70 मैराथन कॉम्पिटिशन मेडल्स हैं। ओके, अब think about a graduation ceremony, your name is called and you walk up wearing the graduation gown or whatever, right? Lekin koi is tarah se apne kandhe pe 70 medal utha ke nahi jata hai, so obviously it got a lot of attention. Ye jo sare ke sare medals the, they actually were the marathons jo usne jeete the, only because his parents could not finance his education. So what this guy was doing was, he was training, he's not in the sports quota as well. Imagine, he's like, you know, any student जो कि घर से पैसे नहीं ला सकता था, so therefore उसने पूरे अपने 4 साल की graduation में उसने दौड़े लगाई, खूब सारी दौड़, okay, and he kept earning money from those competitions, and फिर उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई को फाइनेंस किया। सो नॉट बैड, ही रन अ टोटल ऑफ 7,835 किलोमीटर्स एंड एग्जैक्टली प्रैक्टिस करते हुए, मैराथन्स लड़ते हुए, एंड ही सेड इट वाज ह्यूज। बाकी बच्चे ऐश करते थे, मैं 3 साल से घर नहीं गया फैमिली रियूनियंस पे या एनीथिंग, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता रहता था ताकि मैं, मेरी पढ़ाई ना रुक जाए। इमेजिन करो कुछ, इमेजिन तुम, हाँ, और तुम किस लिए लड़ते थे अपने माँ बाप से कि मैं स्कूल के बाद 1 मिनट के लिए घूमने चली जाऊँ, पिक्चर चली जाऊँ, मैं क्लास बंक कर लूँ, निकम्मो।
2: ये हमारे माँ बाप कम नहीं थे शर्मा जी के बच्चों को सामने लाने के लिए कि अडल्ट होने के बाद अब भी मेरे को यही सेम डायलॉग्स हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल।
0: पहले घर पे भेजती होती थी, अब शो पे भेजती हो रही है। पॉप सिर्फ ऑडियंस बदल गए हैं। हाँ, ऑडियंस बदल गए।
2: मैं वो होना, वो सच्चाई लाना चाहती थी कि ये बात सच हो जाए जो मेरी अगली खबर में।
0: चलो,
2: आई यूज्ड टू फैंटेसाइज अबाउट
0: इट। ओ, इसकी फैंटेसीज की बात करने वाली है, जाना मत कहीं पर, इट्स गेटिंग एक्साइटिंग, दिस फ्राइडे इज गेटिंग एक्साइटिंग।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
4: Check it out.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ यहाँ पर अंतरा जो है वो बेचैन हुई अपनी खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए. गुड मॉर्निंग, इट्स मस्ती मैडनेस.
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है.
2: सो आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट माय फैंटेसी. ओके, एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट ओनली माय फैंटेसी. मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे नायाब किस्म की पर्सनैलिटीज होंगी जिनकी भी ये पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी फैंटेसी रही होगी.
0: जी,
2: तो फैंटेसी वॉज कि एक दिन किसी एक दिन जस्ट मॉम डैड बहुत सीरियस टॉक के लिए बुलाया और बोले कि बेटा इट वॉज जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप यू हम्बल, वी नेवर टोल्ड यू बट वी आर रिच मिलियनेयर्स है हम.
0: ऐसा नहीं होने वाला, सुन नहीं होने वाला ना, क्यों माँ बाप पे प्रेशर मार रही है. हाँ.
2: बट ये फैंटेसी थी कि कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए. लाइक स्ट्रगल अलॉट, लगता था कि काश काश ऐसा एक ऐसा चमत्कारी दिन हमारी जिंदगी में आ जाए कि ऐसा कुछ. बट इट इज नॉट फैंटेसी फॉर एटलीस्ट दिस गाय. 24 साल का ये लड़का 20 साल तक यही सोचता रहा अपनी जिंदगी में कि भाई वो बहुत ही पुअर है, बिकॉज ये जो इनके पापा है ही वॉज लाइक बहुत एक बड़ी कंपनी के लाइक बिलियनियर्स वाला कंपनी के मालिक एंड एवरीथिंग. बट बिकॉज ये सर चढ़ के उसके ना बोले, सो ही केप्ट ऑन लिविंग फॉर like 20 years with his wife, एक छोटे से congested से apartment में बहुत ही. and वो हमेशा अपने बेटे को यही बोलता रहा कि भाई अभी भी जो भी चल रहा है, बहुत debt है हमारे ऊपर, जो भी चल रहा है, हमने बहुत loan दे रखा है, दोस्तों से पैसा ले रखा है, जैसे तैसे करके चला रहे हैं and all those things. और so obviously the beta was like you know, no I have to study hard, अब मेरे को पढ़ना, loan कैसे चुकेगा and all those things. हम्बल करने के बाद जब भाई बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, 20 साल का हो गया, तब जाके उसको बताया कि बेटा ये जो कंपनी है कि इतने बिलियन डॉलर की है, तुम बिलियनर के बेटे हो. सोचो वो मोमेंट.
0: नहीं नहीं, वो मोमेंट तो सोच ही लेंगे, ठीक है, वो बंदा पागल हो जाएगा, इसके बाद में बोलेगा उड़ाओ उड़ाओ पैसे उड़ाओ, ठीक है, इट्स लाइक न्यू मनी. लेकिन द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी इन्होंने उस बच्चे को सीधा तरीके से पैसे की वैल्यू बताने के चक्कर में ये सिखा दिया कि बेटा पूरी जिंदगी लोन पे पली जा सकती है और अपनी अगली जनरेशन को डाली जा सकती है वो प्रेशर कि बेटा तू उतार देना, जैसे तेरे माँ बाप ने लोन पे जिंदगी सारी बिताई है, तू भी ऐसा ही करना और अपने बच्चे पे प्रेशर छोड़ना.
3: मौसम देखे, रंग बदलने, पंछी सारे.
0: मेरे से बच्चा होता तो यही सीखता.
2: Oh my God. Like, but I know for a fact, I've only seen this in movies where, you know, rich parents want to humble their kids and, you know, उनको सब कुछ मतलब grounded रहना बहुत ज्यादा
0: जरूरी. अमीरों के पास कोई और काम नहीं होता ना, यही होता है पैसे कैसे छुपाएं हैं और हमें हमें जिंदगी भर है पैसे कैसे कमाएं.
4: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: एंड ऑफ कोर्स रेडियो मसी 24/7 पर। इस समय बस थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं, लेकिन मुझे ना एक मिनट के लिए बचपन की एक याद आ गई कि भाई सुबह उठ के जब माँ बाप तुम्हारे चाय पी रहे हैं तो चाय पीते टाइम तुम भी बोलते हो हमें पीनी है, नहीं नहीं तुम दूध पियो नहीं तो तुम काले हो जाओगे, राइट?
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है,
0: मतलब आज के दिन में फिर हमको लाल भी होना चाहिए अगर हम वाइन पीते तो, क्यों भाई अंतरा?
1: नेवर एंडिंग उनके सेट ऑफ बिलीफ्स जो हमारे भी उन्होंने अंदर डाल दिए थे कि अरे बीज खा लिया पेड़ उगेगा, अब तो
0: Exactly.
1: तो पेड़ ही उगेगा अंदर से।
0: तो उसी चीज के चलते आजकल एक बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर स्टोरी कि एक बाप ने अपने न्यू बॉर्न बच्चे को देखा एंड द स्किन टोन वाज मच डार्कर देन बोथ द पेरेंट्स, और उसने अपनी बीवी को देख के बोला भाई क्या ना तू काली ना मैं काला, यू नो विदाउट ऑफ कोर्स शोइंग एनी काला गोरा डाउन और अप राइट नाउ, बट द पॉइंट इज कि उसको लगा कि भाई ये रंग बच्चे का हम दोनों पे नहीं गया, ये किस पे गया है ये। सो पत्नी ने बड़े आराम से बोला कि तू इतनी कॉफी पीता था यू नो व्हेन यू नो वी वर काइंड ऑफ कंसीविंग, तो ये तो होना ही था ना। इनफैक्ट शी गेट्स वेरी एंग्री विद द हस्बैंड एंड सेज तेरी वजह से है, अब हम क्या करेंगे, तुझे कहा था कम कॉफी पी। तो मुझे बिल्कुल अपने माँ बाप याद आ गए उस टाइम पर कि हाँ भाई लॉजिक तो वही है, नो डाउट, क्यों भाई?
1: मुझे लगता है कि उसके इस सवाल का एक्चुअली में ये सही ही जवाब है। जिस तरीके का उसने सवाल पूछा था उसके लिए यही बनता है कि बिकॉज तूने कॉफी पी थी इसीलिए हमारा बच्चा काला हुआ।
0: बिल्कुल, अगर तू ऐसा ना करता तो आज हमारा बच्चा कितना गोरा फूल जैसा होता। वेल बायोलॉजिकली इतना मैं जरूर बताना चाहूंगी कि स्किन कलर जो होता है वो डिटरमिन होता है एंटायरली बाय द जेनेटिक्स एंड द मेलानिन, इट हैज नथिंग टू डू विद द कैफीन कंजम्पशन, ओके? बट हमारे माँ बाप तो हमारे माँ बाप है, उनकी जेनेटिक्स की साइंस तो अलग ही है वैसे भी, क्यों भाई?
1: उनकी खुद की साइंस भी अलग है। मतलब ये लोग अपने अपने में मिलकर ही सारे सारे डॉक्टरी भी डिग्री भी पा रखी है इन्होंने, सब कुछ कर रखा है,
0: सब कुछ।
1: आई एम श्योर यू नो अबाउट इट,
0: एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, ऑल चिल्ड्रन नो अबाउट इट टिल दे बिकम पेरेंट्स।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: ये मेरे को एक चीज बड़ी नायाब सी लगती है जेन जी के बारे में कि हर वो चीज जो हमने कर रखी है इन्होंने बस उन चीजों को टर्म्स दे दिए.
2: सही बात है.
3: This is Musti Madness on Radio Musti.
2: भाई जिंदगी में होता तो वही सब आया ना, कोई नई चीजें तो होने लगनी चाहेंगी. वही बच्चे पैदा होंगे, वही लोग मरेंगे, वही काम करेंगे, वही पढ़ाई करेंगे, बस उनके टर्म्स बदलते जाएंगे, राइट? आप क्या है?
1: So, starter kit के बारे में आपने सुना होगा, but this is starter marriage. They have termed it as starter marriage.
2: Oh, okay.
1: इसका मतलब ये है, this is a first marriage that basically ends within 5 years. कोई बच्चे नहीं, कोई major financial ties नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि it is a self discovery phase rather than a lifelong commitment. भाई इतना fancy बनाने की ज़रूरत नहीं है.
2: वाह. Very, very, very creative.
1: Starter marriage है ये.
2: जी.
1: Yeah, very creative. Living तो कोई कर ही नहीं रहा था इससे पहले.
2: बिल्कुल. I know.
1: उन्होंने बताया नहीं.
2: हाँ. तो इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता कि इस generation को कितनी लंबी practice चाहिए. इतनी लंबी तो शादियाँ रहती नहीं. Even millennials की नहीं रहती आजकल. कि जितनी लंबी इनकी practice session होता है, जान पहचान बढ़ा रहे हैं. तो पहले इनको live-in 4-5 साल. कई बार इवन मोर देन दैट. उसके बाद इनको स्टार्टर मैरिज कि भाई ये 5 साल का अब ये चल रहा है हमारा. क्या बोलेंगे उसको? इंटर्नशिप चल रही है. क्या बोलेंगे उसको?
1: इंटर्नशिप चल रही है. हाँ, प्रोबेशन पे.
2: प्रोबेशन पे है. और उस 5 साल की स्टार्टर मैरिज के बाद में हम तुम्हें कन्फर्मेशन देंगे कि है कि नहीं. तो 10-12 तो वैसे ही निकल गए. फिर तो वैसे किसी के साथ रहने का मन नहीं करेगा आफ्टर दैट. आई मीन या
1: Actually, it's not a bad idea, though. Now you put it that way.
2: Yellow. We have some amazing new joinees who want to be on probation. तुमको मुबारक हो, तुम्हारा ही प्रोबेशन. आई एम टू लेजी नाउ टू इवन गेट इनटू ऑल दिस, बट रेडियो मस्ती 24/7 पर अगर आप चाहते हैं कि हम एक स्टार्टर क्लब शुरू करें यहाँ पर और जस्ट फॉर ट्रायल्स, तो हमें जरूर बताइए. 9151896 3. अंतरा तो है ही, शी विल बी द लीड. क्यों भाई, ठीक है?
1: Yeah, why not?
2: ठीक है.
1: Any interesting thing, let me know.
2: बिल्कुल.
1: हम आवाज उठाएंगे.
2: She's going to write the SOPs over this weekend. फिलहाल के लिए मैं जाके आराम करती हूँ. Have a fantastic rest of the weekend and of course a Friday. हमारे साथ रहिए और हम आपको मिलेंगे 2400 घंटे सातों दिन यहीं पर रेडियो मस्ती 24/7. All right, and have a good day, Antra. Have a very good day.
1: Yeah, I mean, Renuka बस अपनी खुशी छुपा रही है. She doesn't have to come this evening, no? That's what.
2: भाई, ऐसे लग रहा
1: है. Trying to control our happiness.
2: कल शाम के 5 बजे से लग रहा है, आज सुबह के 10 बजे तक यहीं बैठी हुई हूँ.
1: है ना, ऐसी वाली फील आती है. मेरे को भी आती है. मंडे से ट्यूजडे. Yeah.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: इफ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

message, eh?

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आपके

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो, हम 33 वर्ष हैं।

लगे तुम्हें लगे।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of week?

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Jump.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.